0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: नमस्ते बहनोर भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ।
1: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।
2: Forget coffee, chai. He has got your morning kick. UAE's number one way to rise and shine. The Big Breakfast with Zip on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding.
3: Good morning, it's past 6 a.m. on this 9th of June, second day of the working week. It is a Tuesday morning. Everything will be Mangal on this Mangalwar. Bas shart ye hai, you gotta keep it locked to Big 106.2, a part of the Fun Asia Network. इस शो में वो सब कुछ है दैट रीचार्जेस योर बैटरीज ऑन द वे टू वर्क। लेट्स किक स्टार्ट विद टीवी मॉच, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। गुड मॉर्निंग।

0: जो भी जिंदगी आपकी ओर फेंके, व्हाटएवर लाइफ थ्रोस एट यू, डक एंड लेट इट हिट समवन एल्स.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: हर एक चीज का सामना खुद तो करने की जरूरत नहीं है ना. हाउ इज दैट फॉर एन अर्ली मॉर्निंग वियर्ड शावर थॉट. दैट्स हाउ वी स्टार्ट अवर डे एवरी डे इन द मॉर्निंग. हाउ आर यू डूइंग ऑन दिस मंगलवार, इट्स ट्यूसडे मॉर्निंग, 9th of June. तो शट अप करें, शुरू करें. दिस इज द शो दैट गेट्स यू अप एंड रनिंग इन द मॉर्निंग. इफ देयर इज अ सॉन्ग दैट हेल्प्स यू डू दैट, अगर कोई गाना आपको इस काम में मदद करता है, अगर आपकी बैटरीज रिचार्ज करता है कोई गाना, दिस इज द अर्ली मॉर्निंग रिक्वेस्ट. आई गॉट 45 मिनट्स टू रिक्वेस्ट फॉर योर फेवरेट सॉन्ग्स. वो गाना जो आपकी प्लेलिस्ट में नंबर 1 है, क्यों है, अगर आप बताना चाहते हैं गिव मी अ कॉल. Let me know. गम खरीद करते हैं. नंबर है 800-1062. That's 800-1062. Got a message from Anshuman early in the morning. And Anshuman ने कहा कि I want to hear the original Toba Toba. अब original Toba Toba से I am assuming that you mean this one. मजा तो आता है यार, to take a trip down memory lane. सलीम सुलेमान, सोनू निगम, कुणाल गांजा वाला, सुनिधि चौहान, रिचा शर्मा, all in one song coming up right here on the big breakfast with me. Say good morning.
2: अरे को है क्या?
3: Yeah.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

Was this a song that actually started the whole S.P. Balasubramaniam and Salman Khan ka partnership? I don't know, yeah, but this is the kind of stuff that really makes my morning. Thank you very much, Sameeksha, for that wonderful message, and all your encouragement keeps us going, makes me wake up at stupid o'clock every day in the morning. But yeah, Lata Mangeshkar, S.P. Balasubramaniam, Patthar ke phool se kabhi tu chhaliya lagta hai. Coming up in just a while, back to normal programming. पति पति और वो दोस्त, एक गाना इज कमिंग अप जो मैंने लगाया हुआ है आपके लिए. इट्स कॉल्ड दिल वाले चोर, आदित्य रिखाड़ी की आवाज. इन केस दिस सॉन्ग दैट गेट्स यू अप एंड रनिंग, दिस इज द अर्ली मॉर्निंग रिक्वेस्ट. आई गॉट अबाउट 23 मिनट्स टू रिक्वेस्ट फॉर योर फेवरेट सॉन्ग्स राइट हियर ऑन बिग 106.2, अ पार्ट ऑफ द फनी एशिया नेटवर्क. बिग 106.2.

0: कसम से जितनी तारीफ करें आप लोग की उतनी कम है।
1: तू कमाल
0: के हमारे लिसनर्स हैं हियर इन द यूएई यार, मतलब इट्स 6:48 ऑन द क्लॉक। आई थॉट कि इतनी सुबह कौन ही कॉल करेगा, और टॉपिक भी थोड़ा मुश्किल था, काफी ज्यादा मुश्किल है। आस्क यू कि डू यू नो द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स इन हिंदी।
2: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: भूषण कुमार विद मी ऑन द फोन लाइन। भूषण गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग?
3: हाय गुड मॉर्निंग, आई एम डूइंग वेल।
0: हिंदी टॉपर थे आप, बताइए सच?
3: Yes,
0: भूषण कुमार।
3: So, I believe in astrology and मैं काफी familiar हूँ ये सब चीजों से, you know.
0: Very nice. You're the perfect actually expert to tell me के क्या है? What are the 9 planets known in Hindi? I just knew about, of course, पृथ्वी तो मेरे को पता ही है, but I just knew के Saturn को कहते हैं शनि, which is like a nice little correspondence. लेकिन बाकी planets आप बताइए. What do you call Mercury?
3: जैसे अभी मैं सीक्वेंसली मैं अगर जाऊँ मर्क्यूरी को बुध बोलते हैं।
0: हाँ
3: या सीक्वेंसली इफ आई गो सन इज सूर्य, मून इज चंद्रमा, जुपिटर इज गुरु, यूरेनस इज राहु, मर्क्यूरी इज बुध, वीनस इज शुक्र, नेपच्यून इज केतु, सैटर्न जैसे आपने बताया शनि है, और लास्ट है मार्स इज मंगल।
0: यही पे थोड़ा कंफ्यूजन है यार, बिकॉज आई ऑल्सो थॉट कि राहु केतु वॉज यूरेनस एंड नेपच्यून, बट आई एम ऑल्सो फाइंडिंग अरुण वरुण, ये क्या है? अरुण वरुण भी होता है?
3: नहीं सर, जातक के हमारे जो हिंदू एस्ट्रोलॉजर्स के हिसाब से यही 9 प्लैनेट्स, इसके अलावा हो गए, बट जब हम कुंडली वगैरह या हम निकालते हैं तो कंसीडर दिस ओनली।
0: मैं तो गूगल कुंडली में विश्वास करता हूँ, तो गूगल पे जब मैंने सर्च किया तो उसमें बता रहे कि यूरेनस का होता है अरुण एंड नेपच्यून का होता है वरुण यार, बट या इवन आई थॉट दिस राहु केतु, आई थिंक यू आर राइट फॉर अ चेंज एंड गूगल इज रॉन्ग। क्या बात है भाई भूषण कुमार, बट वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। एंड क्या प्लान है आज का? How is the day looking like? Do you like to do a bit of astrology early in the morning? कुछ करते हो कि आज का दिन कैसा रहेगा?
3: Yes, definitely. Each day, I have my fix, lucky days, lucky dates.
0: अच्छा.
3: So, अगर मुझे कुछ बड़े काम करने हैं या कुछ, so I will choose that dates and the days as well.
0: So, what do you have to say? Is it like a general prediction that you can do about today, के 9th of June, 2026, आज कैसा दिन रहेगा for people?
3: I'm ruled by number 9 only.
0: हाँ.
3: So आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है. So I'm into sales and मैं चार्जर में रहता हूँ and yes.
0: क्या बेचते हो आप?
3: मैं मीटिंग्स करने जा रहा हूँ, अबू धाबी जा रहा हूँ मैं, just for the meetings, just to take some orders and yeah. तो आज मेरा दे वैसे भी लकी है मेरे लिए.
0: Very nice है. So it's got to be a nice confidence booster ना, और मंगलवार भी है, 9 तारीख आपका रूलिंग भी है, और 9 नंबर से आप रूल भी होते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस तो सही लेकर आप निकलते होंगे कि यार आज तो मैं डील क्रैक करके ही लौटूंगा.
3: Yes, 100%.
0: Wonderful, yeah. So all of our good wishes are with you and thank you so much for calling us and letting us know. Yeah.
3: Thanks.
0: Take care. Have a wonderful day. That is हमारे आज के expert astrology कह लीजिए, हिंदी कह लीजिए. So yeah, that is Bhushan Kumar. That's what I like to do early in the morning. थोड़ा सा मैं आपका knowledge check करता हूँ. And there's nothing like a bit of trivia to get you up and running. Let's move towards a bit of Benny Deyal, उड़े दिल बेफिक्रे का title track. सिर्फ 9 मिनट बच गए हैं, दी अर्ली मॉर्निंग रिक्वेस्ट आर, अगर कोई गाना आप सुनना चाहते हैं कॉल कीजिए, जस्ट लाइक भूषण डेड, 800-1062 इज द नंबर. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सेड, गुड मॉर्निंग.

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: Bro, imagine you book your dream home and then drive away in a brand new Jador T2.
2: Yeah, right. I wish.
1: I'm serious. Book at Symbolic Zen Residences Al Furjan before 30th of June and boom, the Jador T2 is yours.
2: And the apartments?
1: Fully furnished with panoramic balconies, smart automation and modern closed kitchens.
3: I'm going now.
1: Visit Symbolic Experience Center on Sheikh Zayed Road or call 800-5300 now.
4: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
5: वाओ, योर हेयर कलर लुक स्टनिंग.
6: थैंक्स, आई डिड इट मायसेल्फ दिस मॉर्निंग इन 5 मिनट्स.
5: या राइट.
6: नो, इट्स हेना स्पीडी इजी हेयर कलर दैट्स मेड इन इटली. इट्स अमोनिया फ्री एंड एनरिच्ड विद हेना एक्सट्रैक्ट एंड आर्गन ऑयल.
5: रियली?
6: या, एंड विद अ इजी कॉम एप्लीकेटर इट जस्ट टेक्स 5 मिनट्स.
5: आई एम बाइंग इट राइट नाउ.
6: गेट मैक्सिमम ग्रे कवरेज, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
7: Craving pizza? Here's something even better. Order for just 50 dirhams on the Papa John's UAE app and enter the Papa Cash and Rewards raffle. You could win 50,000 dirhams cash every month, plus monthly iPhones. And that's not all. Everyone wins with free pizzas and sides guaranteed. Dine in, take away, or get it delivered. Just order through the UAE Papa John's app. Download, order for 50 dirhams. Enter the raffle. Everybody wins. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
10: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
11: Good morning, it's 7:15 on the clock on this Tuesday. It's 32 degrees Celsius right now. Quite a sunny start to this day. Feels like 37 degrees right now. Highs of 35, lows of 31 degrees Celsius.
10: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.in.

0: एक ऐसी जगह जहाँ की हवा रोज ऑलमोस्ट हर घंटे बदलती है, दैट इज द टेक्नोलॉजी. व्हाट्स अप इन द वर्ल्ड ऑफ टेक दिस मॉर्निंग.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल की हवा थोड़ी सी आज से बदल सकती है इन द वे दैट यू वांटेड टू बदलो, बिकॉज यू कैन नाउ रीऑर्डर योर ग्रिड. दैट्स व्हाट्स बीन अनाउंस्ड. आई पर्सनली एम नॉट being able to do it since morning. मैं try कर रहा हूँ, लेकिन here's what you can do. Yeah, although there is the pinning to the top option, but you can only do three of your posts you can pin to the top, right? The most important ones that you think जिसको सबसे ज़्यादा traction मिल रहा है, या whatever your funda is behind that. लेकिन now you can actually long press on a post. उसमें option आना चाहिए of reordering your grid. You can then kind of just drag it and put it आगे पीछे wherever you want. And so अपने जो grid है आपका on your Insta profile, on your Insta page, you can reorder it and make it look as aesthetic as you want. So upar niche aage piche apne khud ke aap post kar sakte ho. That's the latest from the world of Instagram. Agar aap ye kar paaye to please mujhe bhi batao, lekin kyunki main nahi kar pa raha hu yaar. Coming up in just a while, a true Shankar Madhavan classic, a bit of the old and the new mein ye wala gana.
2: Bad morning ji jidhar nu jao munde tak kende ne ji wow billo tere barki ko dharti te hor
0: hai. A song called Wow without Saif Ali Khan. Wow, yeah, that just does not make sense. This is the Big Breakfast with me, Sid. Good morning.
1: Big 106.2.
3: सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना.
4: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना.
3: अलरास बोले तो
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर. शारजा, सज्जादेरा, रसलखोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं.
3: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी. विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर.
5: This June, it's game on with Big Ticket.
6: A guaranteed 25 million dirhams up for winning.
5: Plus, 5 more winners taking home 1 million dirhams each.
6: And 4 25,000 dirhams winners every week, all the way to the final whistle.
5: Score big. There's plenty in play.
6: Buy your ticket now at bigticket.ae.
7: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
1: The Big Mix. Weekdays, 10 a.m. to 2 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
8: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: The Big Mix. Miss kiya gaya?
9: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते.
10: अजहर, व्हाट्स अप?
11: आई एम गुड ज़ारा, हाउ आर यू?
10: अरे ये देखो, पॉजिटिविटी आ गई. ऑफ एयर तो ऐसे हल्लू हल्लू बोला था, जैसे पता नहीं अभी नींद से.
11: मैं मीटिंग में था, उससे बाहर निकला हूं.
10: ओ, तो प्रोफेशनल एक्टिंग करनी थी. कैसे, क्या एक्टिंग की, क्या बहाना मारा? बीवी का फोन आ रहा है.
11: कुछ ऐसे अगर पर्सनल कॉल बोल के निकलूं मैं.
10: जरा स्पीकर पे डालना मुझे मीटिंग रूम के अंदर जाके.
11: बिल्कुल.
10: मैं एक्टिंग बहुत बढ़िया करती हूँ, मैं कर लूंगी.
11: नहीं,
10: जल्दी आओ, मैं गिर गई हूँ सीढ़ियों पे से. फुल आपका अप्रेजल हो जाता है, मैं ऐसी एक्टिंग करती हूँ. फिलहाल अप्रेजल तो नहीं, हम दो टिकटों की बात करेंगे. माधुरी दीक्षित की ये मूवी आई, देखी आपने वैसे, माँ बहन?
11: नहीं, मैं देखने वाला हूँ, वीकेंड का वेट कर रहा था.
10: घर पे है आपकी माँ बहन?
11: माँ है, बहन नहीं है.
10: बहन नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, बन जाएंगी, बहुत बन जाएंगी.
11: नहीं
10: बनानी.
11: नहीं बनानी.
1: Cheer your midday mood Monday to Friday, 10 a.m. to 2 p.m. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
0: Good morning, it's 7:29 on the clock, and let's take a look. सबसे पहले at the usual suspects, 311, E11 heading south, going towards Dubai from Sharjah. You'll find 7 से 9 मिनट की देर heading south, and there is the S102 par aaj unusually high traffic. This is Sharjah Ring Road, and kisi industrial area in Sharjah industrial area 10 ki taraf jata hua traffic aapko milne wala hai. Then there's also congestion assets to be expected right outside University of Sharjah S112 par, and this is heading in both directions, heading east and west. S116 Maria Street par bhi aapko traffic milega. 611 par Emirates Road, there is a 6 to 8 minute delay. Again, heading south going towards Al Awir from Khabanij 2. Al Town Street in Sharjah is also quite congested. Chalte hain Dubai ki aur. 44 Al Khail Road par going towards Business Bay from D3. No surprises out there. 4-5 minute extra bitayenge. 311 par abhi se Al Warqa 1 se south jate hue traffic going towards Dubai Silicon Oasis DSO, and there's a bit of congestion right outside Motor City as well, Arjan area mein. And the junction of 44 and 311 is also a bit busy at JVT.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
12: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ.
13: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं.
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

ई का कुछ आधा आधा 35 मिनट्स का एक एपिसोड होता है, आई थिंक वीकली होता है, एवरी मंडे देयर इज दिस एपिसोड दैट कम्स आउट एंड वरुण धवन अपीयर्ड ऑन द लेटेस्ट एपिसोड एंड दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो कि भाई मतलब ये बंदा इज गॉट अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड ही कैन टेक अ जोक बिकॉज इस एपिसोड में वरुण धवन इज टेलिंग अस अबाउट हिज फेवरेट वरुण धवन मीम्स. सो या वरुण धवन टॉकिंग अबाउट हिज फेवरेट वरुण धवन मीम्स एंड माई फेवरेट लाइन वॉज के यू नो एक कॉम्पिटिशन चलता रहता है बिटवीन वरुण एंड अर्जुन कपूर के वेन देर इज अर्जुन कपूर का सीजन होता है कि उसके ऊपर मीम्स जब बनने लगते हैं तो फिर वरुण इज अ बिट रिलीफ किया, अरे यार चलो ठीक है आई कैन गेट ओवर माई क्रिकेट स्माइल अ बिट, बट देन वेन यू नो द फोकस शिफ्ट्स ऑन हिम देन अर्जुन कपूर गेट्स रिलीफ कि चलो ठीक है कुछ दिन तो एटलीस्ट पीपल आर फोकसिंग ऑन वरुण एंड नॉट मी. बट हिज फेवरेट वॉज द फैक्ट दैट उसके क्रिकेट स्माइल जो है ही सेड दैट ही कुड नेवर थिंक, कभी सोचा भी नहीं था ख्वाब में भी कि कोई उनकी स्माइल को लेकर इतने सारा मीम्स बनाएंगे यार. आई मीन हाइट वाइट चलो ठीक है, एक्टिंग केपेबिलिटी एंड ऑल ऑफ दैट ही हिमसेल्फ सेड ना कि एक्टिंग वगैरह के बारे में तो चलो ठीक है मैं सोच भी सकता था लेकिन स्माइल क्रिकेट है. एंड देन ही हैड अ ऑब्जर्वेशन राइट जो मैंने कभी सोचा नहीं था इसके बारे में, बट वेन यू गो टू नेटफ्लिक्स एंड देयर इज दैट प्रोफाइल थिंग राइट, जो प्रोफाइल का जो एक स्टॉक इमेज होता है विच इज एन एनिमेटेड फेस दैट दे हैव ओवर देयर अनलेस एंड अंटिल यू पुट योर ओन पिक्चर ओवर देयर, सो देयर इज अ स्टॉक इमेज, सो वो स्टॉक इमेज का स्माइल भी क्रूकेड है. सो या आई मीन इफ यू हैवंट देन गो एंड वॉच तन्मय रिएक्ट्स उसका वरुण धवन स्पेशल. स्टेइंग ऑन न्यू रिलीजेस, वेलकम टू द जंगल से ऊंचा लंबा कद फॉरएवर, दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड, गुड मॉर्निंग.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
1: For over 15 years, I have stood by the UAE with insurancemarket.ae. Now I may sound a little fresher, but I am still the same Alfred you love. Insurancemarket.ae.
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
3: Trade 24/7 gives UAE traders access to global markets with instant deposits and withdrawals, low spreads and real-time insights.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
4: It is 7:44 on the clock and let's take a look सबसे पहले at the capital Abu Dhabi. यहाँ पर थोड़ा बहुत traffic आपको मिलने वाला है at University of Abu Dhabi area, Zayed City के आसपास. You find 5 to 6 minutes की देर on E22. Then there's a bit of congestion at Musaffa Industrial E30 पर and sticking at E22 also you'll find a bit of congestion. Going towards Sheikh Zayed Grand Mosque Sector 13 Khalifa City पर भी थोड़ा बहुत congestion and then going towards Masdar City E20 पर भी आपको मिलेगी 3 to 4 minutes की देर. Then चलते हैं दुबई शारजा की ओर. E311 पर हेडिंग नॉर्थ दुबई साउथ DFC पे 3 to 4 minutes एक्स्ट्रा बिताएंगे. मोटर सिटी पे आज ट्रैफिक है एज यू गो साउथ फ्रॉम अरेबियन ब्रांचेस अरजान एरिया में मिलेगी आपको 4 to 5 minutes की देर एट 311. देन JBT में थोड़ा बहुत कंजेशन ऑन E44 एंड टॉकिंग अबाउट अलखेल रोड गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस बे एज यूजुअल फ्रॉम D3 यू विल फाइंड 4 to 5 minutes की देर. एंड 311 पर एक और पॉकेट ऑफ ट्रैफिक हेडिंग साउथ एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स DSO फ्रॉम अलवरका 1.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: जो हुआ उससे बड़ी मुश्किल हो गई यार। मतलब इंडियन क्रिकेट टीम की मैं बात कर रहा हूँ, सूर्य कुमार यादव को जिस कैन ड्रॉप लाइक अ हॉट पोटैटो।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: या एमएसके प्रसाद, एक्स सिलेक्टर ऑफ द इंडियन नेशनल टीम, उन्होंने कहा कि यार जो हुआ है बिल्कुल सही नहीं हुआ। ही वाज हिमसेल्फ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। ही सेड कि इतने बड़े प्लेयर को इतनी जल्दी इतने नीजक रिएक्शन में ड्रॉप करना, ये कुछ बात समझ में नहीं आई। मतलब ही इज वन द एशिया कप, ही इज वन द वर्ल्ड कप, ही इज अ पार्ट ऑफ फोकलोर, यू नो, अलॉन्ग विद वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रोहित शर्मा, एम एस धोनी की गिनती में इनका नाम आएगा। एंड आपने ऐसे ही अगली इंटरनेशनल सीरीज में इलेपो टाटा बाय बाय भूल जाओ उसे, गया, ऐसा नहीं होता ना यार। सो हिज थियोरी इज ही इज गॉट अ फंडा। वो कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंडे को जैसे रेस्ट किया है, वैसे सूर्य कुमार यादव को भी रेस्ट किया गया। इज नॉट बीन ड्रॉप फ्रॉम द साइड। हाँ, कैप्टनसी की बागडोर उनके हाथ से ले ली गई है, छीन ली गई है, आई शुड बी सेइंग। बट व्हेन इट कम्स टू एज अ प्लेयर, बिकॉज दैट्स व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग, राइट, के ड्रॉप इज एज अ कैप्टन दैट्स फाइन, लेकिन एज अ प्लेयर ऑल्सो लाइक अ कपल ऑफ बैड सीरीज एंड दैट्स इट, कैन बी द एंड ऑफ हिज T20 करियर जस्ट लाइक दैट, राइट। सो लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर सूर्या सेक दैट what MSK Prasad is saying is right and he will be back after a bit of an injury concern. Kal maine ek poll kiya tha iske upar on our Insta page, so head out to our Insta page 106.2 Big FM, that's our handle on Instagram. Agar aap follow nahi karte to kya kar rahe ho yaar, aap kar lo, because infotainment ke mamle mein number one, wahan pe bahut kuch aapko milta hai jo aapko entertain karta hai all through the day. And the poll question yesterday was ki jo Surya Yadav ke sath to hua this entire big controversy, could it have been handled better? That was option A. Could it have been kuch अलग तरीके से, इन अ बेटर वे, इन अ मोर यू नो रिफाइंड तरीके से, तहजीब से कर सकते थे, या ऑप्शन बी जो हुआ वो सही हुआ? एंड द रिजल्ट हैज शॉक्ड मी। इट्स अ 45-55% अगर मैं कहूँ तो, यू विल से कि अच्छा ठीक है, इन फेवर ऑफ इट कुड हैव बीन हैंडल बेटर, राइट? नहीं, 45% आर सेइंग इट कुड हैव बीन हैंडल बेटर, 55% ऑफ यू हैव एक्चुअली सेड कि जो हुआ वो सही हुआ। क्रूर से निर्दयी
2: राज दिल शहजादा है लगता खुदा।
0: An absolute KK classic coming up in just a while. क्या मुझे प्यार है? प्यार व्यार नहीं करते आप यार हमारे क्रिकेटर्स से। हाँ, 55% से जो, क्या, I mean, have a heart guys।
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती
1: है। नाम है सेठ, सेठ ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2 The Beat of Bollywood.
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
5: Wow, your hair color looks stunning.
6: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
5: Yeah, right.
6: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
5: Really?
6: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
5: I'm buying it right now.
6: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
7: Think car rentals are expensive? Think again, because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: Big 106.2. That's My Song by E-And.

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 92.2 The Beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल। जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
3: वाओ, योर हेयर कलर लुक स्टनिंग।
4: थैंक्स, आई डिड इट मायसेल्फ दिस मॉर्निंग इन 5 मिनट्स।
3: या राइट,
4: नो इट्स हेना स्पीडी इजी हेयर कलर दैट्स मेड इन इटली। इट्स अमोनिया फ्री एंड एनरिच्ड विद हेना एक्सट्रैक्ट एंड आर्गन ऑयल।
3: रियली?
4: या, एंड विद अ इजी कॉम्ब एप्लीकेटर इट जस्ट टेक्स 5 मिनट्स।
3: आई एम बाइंग इट राइट नाउ।
4: गेट मैक्सिमम ग्रे कवरेज, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
5: Think car rentals are expensive? Think again, because right now the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
6: Trade 24/7 gives UAE traders access to global markets with instant deposits and withdrawals, low spreads and real-time insights.
7: Lagta hai barf padne wali hai.
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
9: मॉर्निंग अल्बर्ट सर, 16 मिनट ऑन दिस ट्यूसडे की सुबह 9th ऑफ जून, 33 डिग्री सेल्सियस, नाइस एंड सनी, हॉट स्टार्ट टू दिस डे। इट फील्स लाइक 37 डिग्रीज, हाइज ऑफ 35 राइट नाउ, लोज ऑफ 31 डिग्री सेल्सियस।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरीन। विजिट Ras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour. Brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: हम दोनों है अलग अलग, हम दोनों है जुदा जुदा, एक दूसरे से कभी कभी रहते हैं हम खपा खपा।

0: समय आ गया प्रूव करने का कि आप एक बॉलीवुड के बड़े फैन है। इस टाइम फॉर द बिग बॉलीवुड क्विज,
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: यू नो, अक्षय कुमार की मिमिक्री हर किसी को लगता है कि वो अच्छी कर सकते हैं यार, अनलेस एंड अनटिल सम फ्रेंड्स कम से कि भाई यू शुड स्टॉप डूइंग दैट। यस, सेम सीन विद मी। दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट एंड आज एक अक्षय कुमार फिल्म की रिलीज एनिवर्सरी है। ऑलराइट, सो आई एम गोना बी प्लेइंग आउट टू थिंग्स फ्रॉम दिस फिल्म। एक तो मैं आपको डायलॉग सुनाने वाला हूँ एंड देन एक गाना भी आपको सुनाऊंगा, मेक इट इवन ईजियर देन इट ऑलरेडी इज। राइट, इट्स जस्ट द सेकंड डे ऑफ द वर्किंग वीक, तो ज्यादा स्ट्रेस तो आपको मैं दूंगा नहीं, ठीक है ना। तो डायलॉग है ये वाला,
2: अरे अब तो हम अमीर हो गए हैं।
3: अमीर हो गया तो क्या मैं हवा में बैठूं?
2: अरे खुल के बैठो,
3: या जूता निकल बाबा, या जूता पहन के घर में नहीं घूमने का रहे, जूता निकल।
2: आप बिना बाबू भैया गरीब के गरीब ही रहोगे, चीप थिंकिंग रहेगी। अरे अमीर आदमी जूते पहन के सोफे पे सोता है।
4: और बाबू भैया स्टाइल से जियो,
0: स्टाइल से जियो बाबा भैया। कौन सी फिल्म है? बिफोर यू रश टू डायल 800-1062, आई एम गोना मेक लिसन टू अ सॉन्ग आल्सो। ये गाना कौन सी फिल्म का है? जोरा आएगी 10 से 2 के बीच में। दिस इज जोरा जबी, हिमेश रेशमिया का क्लासिक गाना। कौन सी फिल्म का है? यू गॉट बी स्पेसिफिक, ओके? आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर अ फिल्म फ्रेंचाइज का नाम नहीं, यू गॉट बी स्पेसिफिक, ओके? पार्ट 1 या पार्ट 2, कौन सी फिल्म में ये गाना था? नंबर है 800-1062, कॉल मी 800-1062 अगर आपको फिल्म का नाम याद है। यू कुड विन 2 ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज।
1: बिग 106.2।

यही कहना पड़ता है व्हेन यू हियर अबाउट द ऑसम सेल्फ ड्राइव डॉट ई के डील्स के यार मान मान मेरी बात मान कि इट्स एक्चुअली ट्रू दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेनेवर यू हियर अबाउट द सेल्फ ड्राइव के अमेजिंग डील्स या इफ यू थिंक दैट कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव थिंक अगेन दिस इज डेफिनेटली गोना पुट अ स्माइल ऑन योर फेस सेल्फ ड्राइव डॉट ई हैज द मोस्ट अफोर्डेबल कार रेंटल इन द यूएई राइट नाउ स्टार्टिंग जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ बिल्कुल सही सुना आपने 899 dirhams a month at this price. Paying more just doesn't make sense. No ownership, no long-term commitment, no stress. Just pick your car and drive. Search kijiye selfdrive.ae or download the app now. Self-drive, your car, your price, your way. Here's the classic runaway super hit, Aditya Rikhadi with Saiba. Ab, haan, ye gaana ab classic ho gaya hai. Itna purana bhi nahi hai. This is The Big Breakfast. Saiba.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: It's 8:41 on the clock and I've got somebody on the phone line jinke JD job description se main kafi jealous hu yaar. I've got Ajinkya with me on the phone line. Ajinkya, good morning.
2: Good morning, Sid.
1: यार आप तो लाइक प्रॉपर साइंटिस्ट हैं यार, प्रॉपर वाले. यू नो मोस्ट पीपल हू काइंड ऑफ टेक साइंस, डू इंजीनियरिंग, ये वो, उसके बाद वो एमबीए करके ना फिर वो मट्टी पलीत, वही पैसे के पीछे दौड़. लेकिन यू आर एक्चुअली लाइक अ प्रैक्टिसिंग माइक्रोबायोलॉजिस्ट. वाओ यार, सो इट्स क्वाइट इनक्रेडिबल यार. मतलब बहुत आपका कैसा रहता है, आपका दिन कैसा रहता है?
2: नॉट लाइक मच चैलेंजिंग, बट थिंग इज व्हाट we are doing the quality check for the medicines what we are taking. So jo dawai hum log khate hai uski microbiological purity check karna ye hamara profile rehta hai.
1: Oh wow. So nothing to do with a virus or bacteria or something. Mujhe laga ke usually you know usually ye germs insano ke piche daudte hain, ye insaan in germs ke piche daudta hai. Virus main tumhe kha jaunga. Virus ki duniya ke रावण अजिंक्य रूपी ऑन द फोन लाइन. ऐसा कुछ नहीं है. सो योर डे इज स्पेंट यू लुकिंग इनसाइड अ माइक्रोस्कोप, और व्हाट डज इट हैपन लाइक, व्हाट, हाउ इज इट
2: एग्जैक्टली? मींस माइक्रोस्कोप आल्सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज. मुझे कंपनी का जो हवा रहता है, पानी रहता है, वो सब चेक करना पड़ता है.
1: अच्छा, तो किसी कंपनी में आप जाते हो, पूछते हो भाई हवा पानी कैसा है आपके? अरे आप बताओगे ना कैसा है, मैं क्या बताऊं आपको? आप इसी काम के लिए आए हो. तो आप कंपनी की हवा पानी चेक करते हो, ये मेडिसिन में जो क्लेम हो रहा है वो सब कुछ एट अ माइक्रोबायोलॉजिकल लेवल, इफ इट्स वर्किंग और नो, दैट्स व्हाट यू चेक. व्हाट अमेजिंग जॉब प्रोफाइल आपका है यार. आई मीन इट्स
2: एग्जैक्टली
1: इट्स क्वाइट अमेजिंग. सो व्हाट डू यू डू टू काइंड ऑफ अनवाइंड अ बिट? यू वॉच फिल्म्स लाइक हेरा फेरी, और व्हाट डू यू
2: डू? डेफिनेटली आई यूज्ड टू लव दिस वाचिंग दिस अक्षय कुमार फिल्म्स.
1: है ना, तो एक डायलॉग मैंने लास्ट टाइम सुनाया था, पीपल हु जस्ट ट्यून्ड इन, एक बार फिर से सुनाता हूं, बिकॉज़ यू जस्ट कांट गेट इनफ ऑफ डायलॉग्स लाइक दिस.
3: अरे अब तो हम अमीर हो गए हैं. अमीर हो गया तो क्या मैं हवा में बैठूं?
4: अरे खुल के बैठो.
3: या जूता निकल बाबा, या जूता पहन के घर में नहीं घूमने का रहे, जूता निकल.
4: आप बिना बाबू भैया गरीब के गरीब ही रहोगे, चीप थिंकिंग रहेगी. अरे अमीर आदमी जूते पहन के सोफे पे सोता है.
5: और भैया स्टाइल से जियो.
1: स्टाइल से जियो. बताइए फिल्म का नाम क्या है?
2: ये डायलॉग जो है वो फिर हेरा फेरी का.
1: एब्सोल्युटली करेक्ट यार, फिल्म का हवा पानी सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया अजिंक्य ने. कंग्रेचुलेशंस, दो ओपन मूवी टिकट्स आपके हो गए. अच्छा अब मैं आपसे मुश्किल सवाल पूछता हूँ. पैसा अच्छा खासा मिलता है क्या?
2: वो तो कभी भी अच्छा नहीं मिलता है.
1: नहीं नहीं वो तो छोड़ दो, हम देसी लोगों के लिए इट्स नेवर इनफ. लेकिन आई मीन इज इट लाइक गुड इनफ, अच्छा खासा? पीपल हु आर लिसनिंग इन राइट नाउ, इफ दे वांट टू गेट इनटू माइक्रोबायोलॉजी, वुड यू रेकमेंड इट?
2: डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल, पर अलग अलग सेक्टर्स में माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत रहती है ना. फिलहाल जैसे कि फूड माइक्रोबायोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल है, एनवायरमेंट माइक्रोबायोलॉजी है, तो उसके हिसाब से उनकी जरूरत के हिसाब से पे स्केल डिसाइड होता है.
1: मुझे लगता है कि यार आजकल यू नो दीज प्योर साइंसेज आर कमिंग बैक इनटू फैशन, राइट? एक टाइम था जबकि सब कुछ वॉज क्वाइट मडीड, लेकिन अब जो स्पेशली विद AI कमिंग इन, अब यू नो ऑल दीज जो प्योर साइंसेज चीजें, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट की जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ रही है. डू यू फील दिस?
2: यस एग्जैक्टली. सी देन इफ यू कैन सी इन अराउंड आल्सो लाइक दिस एबोला वायरस आउटब्रेक, दिस कोरोना वायरस आउटब्रेक, लॉट ऑफ आउटब्रेक्स एंड न्यू इमर्जिंग माइक्रोब्स आल्सो कमिंग आउट. सो दिस रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन फ्यूचर विल बी डेफिनेटली गोइंग हाई.
1: Yeah, you kind of making it sound like you look forward to the new strain of all these viruses that are coming in. Ki aapka
2: so we are ready for treating it. We are ready to save the people from it.
1: No, that is jokes apart. You guys are doing a fabulous, fabulous, fabulous job, and keep up the good work. And we are also proud of you. And you know, before all of us, you know, you are the warriors at the forefront of this war. So, chalo, all the best, and you know, keep inspiring us like that. And enjoy yourself at the movies. Yeah. Take care.
2: Thank you, Sid. Bye.
1: That's Ajinkya, microbiologist. You're walking away two open movie tickets in the big Bollywood quiz. Agar aapka bhi ek alag hatke job profile hai, give me a call. Let me know. I love to listen to new job profiles. 800-1062 is the number coming up. Hai jawani to ishq ho na hai. Title track coming up in just a while. This is the Big Breakfast with me, Sid.
6: Sala pura jindagi moh maya ke piche bhagte rahe. लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे. मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
5: Wow, your hair color looks stunning.
7: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
5: Yeah, right.
7: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
5: Really?
7: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
5: I'm buying it right now.
7: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
8: Need a car? The Carfair Group has you covered. From daily rentals to long-term leases and even lease to own. Sedan, SUV, luxury or commercial. Pick your ride, your way, your budget. Backed by 25 plus years of trust and 24/7 support, this is mobility made easy. Carfair Group, a legacy of trusted mobility solutions.
9: Burger craving? Pizza craving? Why choose when you can have both? Introducing the new Cheddar Burger Pizza Collection from Papa John's. Dive into Double Cheddar Nashville, or the Juicy Chicken Burger, or the Bold Flavor-Packed Beef Burger Pizzas. It's burgers and pizza, together like never before. Papa John's. Better ingredients, better pizza. Order now.
8: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
1: 8:48 on the clock. Let's start from the capital, Abu Dhabi. Aapko traffic milega halka bulga isse hi Abu Dhabi University ki taraf jata hua on E22, and there's a bit of congestion Rabban area mein E20, and this is going towards the Sheikh Zayed Grand Mosque. Eastern Mangroves ki taraf jata hua traffic E10 par bhi aapko milne wala hai. Chalte hai Dubai Sharjah ki aur. 311 E11 heading southbound going towards Dubai from Sharjah as usual. You'll find that 7 to 8 minutes ka delay D62 par Madina Mall ke bahar in both directions. These are the cliche traffics. S102 Sharjah Ring Road, S112, 116 Sharjah Industrial is a bit busy as always. And then there's E44 ka usual traffic going towards Business Bay. Nothing unusual this morning. 66 Dubai Alain Road par bhi aapko milegi 3 se 4 minute ki der going towards Al Jaddah.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big. Big 106.2.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Daughter. Over 15 years, I have stood by the UAE. I may sound a little fresher now, but I am still the same Alfred you love.
1: Hate to be the bearer of bad news, but Vaibhav Suryavanshi out ho gaya.
2: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: अगर आप सोच रहे कि IPL तो खत्म हो गया, वैभव सूर्यवंशी गेट विद इट. इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए का गेम हो रहा है एंड वैभव सूर्यवंशी ओपन द इनिंग्स विद प्रभसिमरन सिंह. नाउ बोथ द ओपनर्स आर बैक इन द हट. इंडिया ए 36 for 2 आफ्टर 8.2 ओवर्स. श्रीलंका ए के बोलर्स आर गिविंग आर IPL सुपरस्टार्स रन फॉर देयर मनी. वैभव सूर्यवंशी स्कोर्ड 14 रन इन 12 बॉल्स. तीन चौकों की मदद से प्रभसिमरन सिंह ने सिर्फ 2 रन बनाए. प्रियांश आर्या स्कोर्ड 18 of 16, 2 fours 1 6 एंड ऋतुराज गायकवाड़ स्टेडिंग द शिप 3 out of 12. भाई इट्स अ 50 ओवर गेम. हाँ, सो इट्स वैभव सूर्यवंशी द फर्स्ट टाइम दैट वी आर सीइंग हिम इन अ 50 ओवर गेम. सो भाई आराम से, कोई जल्दी नहीं है. इस टीम के कैप्टन है तिलक वर्मा, दैट्स आयुष बदौनी, सूर्यांश शेदगे, अर्शद खान का पहला गेम है एज इन द इंडिया ए. देन अनुकूल रॉय ऑल्सो गॉट इज कैप टुडे. विपराज निगम है एंड अंशुल काम्बोज कंप्लीट्स द प्लेइंग 11 फॉर इंडिया. सी इवन माई मदर इन लॉ इज एक्साइटेड अबाउट दिस बिकॉज ऑल वैभव सूर्यवंशी फैंस आर एक्साइटेड अबाउट दिस. के विल ही बी एबल टू परफॉर्म फॉर इंडिया इन द इंडिया ब्लूज एंड ऑफकोर्स इन द 50 ओवर फॉर्मैट. उसके बाद आयरलैंड सीरीज में क्या होगा, सो ऑल आईज ऑन वैभव सूर्यवंशी. वन क्यूट थिंग दैट हैपेंड वॉज के यूजली तो यू कॉन्ट टेक योर फैमिली मेम्बर्स ऑन द टूर, बट दे मेड एन एक्सेप्शन फॉर वैभव. आफ्टर ऑल people forget this, he's only 15 years old yaar, so his parents can't travel with him. Thank God for that. This is the Big Breakfast with me Sid. Here's the title track of TB Moj, Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
4: Listen to her every day.
5: Mugambo, खुश हुआ।
6: Gen Z ने आर्यन नाम रेड फ्लैग घोषित कर दिया है।
7: मैं खुद Gen Z हूँ तो मुझे बहुत दुख है इस बात का।
6: दुख क्या है, मतलब आपके नेम की ही इमेज है, आपके कई आर्यन ने लड़कियों का दिल तोड़ा होगा इसलिए सारे आर्यन बदनाम है। तो आर्यन तुम रेड फ्लैग हो नहीं हो?
7: मैं डेफिनेटली नहीं हूँ, अपने आप को तो नहीं मानता हूँ, बाकी तो लोगों को पता।
6: रेफरेंस चेक के लिए 3 एक्स गर्लफ्रेंड्स के नंबर मुझे चाहिए।
7: बीप बीप बीप बीप बीप बीप।
6: मतलब 3 एक्स गर्लफ्रेंड है, मतलब तो रेड फ्लैग है ना।
7: नहीं नहीं, ये तो बस खाली कहने की बात है।
6: अच्छा, तो नहीं है एक भी एक्स गर्लफ्रेंड? नहीं है,
7: डेफिनेटली नॉट।
6: क्या कर रहे हो तुम लोग जवानी में? हमारी जवानी में हम एक साथ 3-3 घुमाते थे। जब हमारी उम्र के हो जाओगे ना बेटा, बिकम 30 ईयर ओल्ड देन यू विल रियलाइज के तब कर लेते तो अच्छा रहता था, अभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास।
0: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
8: Hey, जल्दी हटा, तेरा खटारा। चल हटा।
9: हाँ,
8: जल्दी हटा। हाँ,
0: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
10: It's 9:25 on the clock and usual suspects ki baat main nahi karne wala hu because ye to aapko pata hi hai ki 3:11, 11:44 yahan par traffic hota hi hota hai. Unusually aapko traffic milega at Trade Center roundabout. Nahi, jagah is usual lekin itni baje wahan par traffic kam hi hota hai, lekin today is an exception. Southbound traffic at Trade Center roundabout, be careful. Yahan par bitayenge aap 3 se 4 minute extra. Iske alawa chalte hain a bit further south. मैदान रोड पे आज आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। दिस इज गोइंग टुवर्ड्स सफा पार्क। एज यू क्रॉस बोलिंग सेंटर यू विल फाइंड 4 से 5 मिनट की देर। एंड फर्स्ट अलखेत स्ट्रीट अलकूस इंडस्ट्रियल फर्स्ट से हेडिंग साउथ एंड ऑल्सो नॉर्थ फ्रॉम अलकूस इंडस्ट्रियल थर्ड यू विल फाइंड 3 से 4 मिनट की देर।
0: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था और शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

नहीं है, तो आपको पता है आपके सामने साक्षात आपका इतना बड़ा 56 इंच का टीवी है. यूज दैट एंड फिगर आउट गुड कंटेंट फॉर योरसेल्फ. यू कैन गूगल दैट टू. आई विल आस्क मानसी नाउ टू कम इन विद अ बिग

0: यार दुनिया कहां से कहां जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, स्पेशली इन साउथ कोरिया।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: द लेटेस्ट ट्रेंड इन साउथ कोरिया, आई मीन ऑल वियर ट्रेंड्स समहाउ स्टार्ट इन साउथ कोरिया। द लेटेस्ट ट्रेंड इज डोपामीन वेबसाइट्स। पीपल आर यू नो रियली गोइंग ऑन टू डोपामीन वेबसाइट्स। दैट इज द लेटेस्ट क्रेज आउट देयर। ये क्या होती है डोपामीन वेबसाइट्स? यहां पर जाकर इट लेट्स यूजर्स फेक शॉप, browse menus and track pretend deliveries and all of this for stress relief. I just don't get it yaar. I mean, haan, shopping karne se, paisa kharch karne se aapko thoda stress to hota hai, lekin fake shopping karke aapka stress relief ho jayega? Ye wahi wala logic hai yaar, iske sar pe chot lagi, yaaddaasht chali gayi, sar pe ek baar phir se maro, yaaddaasht wapis aa jayegi. Kya chal raha hai bhai? Cocktail 2 se Mashuka is coming up in just a while. Latest super hit from Pritam Da. Aur this trend has got attention, the dopamine websites guys. It turns everyday stress habits into harmless online simulations. बहुत सारे यूजर्स कहते हैं कि इट ऑफर्स द फीलिंग ऑफ शॉपिंग, ऑर्डरिंग फूड, वेटिंग फॉर अ डिलीवरी विदाउट द कॉस्ट प्रेशर और रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंस। आई फील लाइक डूइंग अ पोल ऑन दिस। वुड यू एक्चुअली अग्री विद दिस फंडा ऑफ डोपामीन वेबसाइट्स? हेड आउट टू इंस्टा पेज 106.2 बिग एफएम।

0: गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा,
0: गुस्सा आ रहा है देखिए। ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: प्रीतम चक्रवर्ती का लेटेस्ट सुपरहिट बोले तो इट्स टॉपिंग ऑफ द चार्ट्स वर्ल्ड वाइड. In fact, इसका जो ट्रेलर है, that is number one in 8 countries, including the UAE.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: So it's 9:53 on the clock. Time for me to say goodbye to you. आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं. कल सुबह एक बार फिर आपसे मिलूंगा. Don't forget on a weekday morning, this is the सही ठिकाना. अगर आप अपने मूड को सही ठिकाने पर लगाना चाहते हैं, तो 6 to 10 on a weekday, it's a date with me, Zed. The show is called The Big Breakfast. You can follow me on socials. I'm Zed Seth. SIDSETH and of course 106.2 Big FM पर तो आप follow करते ही होंगे. नहीं करते तो आप कर लीजिए. बहुत सारा entertainment that you can rely on to pep you up, put you in the right mood. You can depend on us for that. 106.2 Big FM. चलता हूँ and I'm going to leave you to enjoy the rest of your Tuesday. Bye bye. Big 106.2.

0: charlesmarket.ae. Over 15 years, I have stood by the UAE. I may sound a little fresher now, but I am still the same Alfred you love.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: I love this. I love that, you know, abhi future ki taraf jaate jaate, we are going back to our old school ways. And in fact, I felt like this generation was, you know, getting a little too distant from us, especially with all the new words that they've been coming up with, you know, say sare weird actions karna. Mujhe nahi samajh aa raha tha. And I felt like, yaar, ye generation bahut zyada distant ho chuka hai humse. And hamare taur tareeke, matlab insaan in the next few years to bhool hi jayega. I know I'm talking like as if I'm some, I don't know, really elder person, but I still feel like मिलेनियल और जेंजी के बीच में ही काफी ज्यादा गैप आ गया है. सो आई कैन ओनली इमेजिन कि एक जेंजी और बूमर के बीच में कितना गैप होगा. पॉइंट इज, राइट नाउ आई एम रीडिंग दिस आर्टिकल विच सेज दैट देयर इज अ मैसिव डिक्लाइन इन डेटिंग एप्स. लाइक यू नो, द जनरेशन इज नॉट इंटरेस्टेड इन डेटिंग एप्स एनीमोर. टिंडर हो, बम्बल हो, ये जो कुछ भी हो, इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को डेटिंग एप्स में. दिस डिक्लाइन स्टार्टेड इन 2024 एंड उसके बाद से ये डिक्लाइन बस बढ़ता ही गया बिकॉज द जेंजी इज नाउ फीलिंग बर्नड आउट ऑन डेटिंग एप्स एंड दे फील लाइक, यार, ये मतलब इसमें कुछ भी नहीं है. देयर इज नो जेन्युइन कनेक्शन दैट देयर एबल टू फाइंड, व्हिच इज बेसिकली द फीडबैक दैट वी हैड, राइट? जेन्युइन कनेक्शन नहीं मिल पा रहा होता, सो वी प्रेफर्ड मीटिंग इन रियल लाइफ. एंड नाउ जेन ज़ी इज ऑप्टिंग फॉर द सेम वेज, the old school millennial ways, which is, you know, going to run clubs or any kind of book clubs or in-person events and gatherings to meet people instead, because a consensus says that Gen Z now feels ki yahan pe real connections bante hain when you meet people in real life, but dating apps pe koi real genuine connection nahi ban raha hota. So that is why dating apps are now dying, because the generation is not interested in them anymore. I feel that is what the new future should be. Ye jo hame movies mein dikhaya jata hai na, future aise hoga, urti hui gaadi होंगी, ये वो ब्ला ब्ला, आई फील लाइक वी शुड डिफाई दैट, है ना? वी शुड चेंज ऑल दोज वेज. आपने प्रिडिक्ट किया था कि फ्यूचर ऐसा होगा, नहीं. फ्यूचर विल बी वेयर वी गो बैक टू द पास्ट, हाउ थिंग्स यूज टू बी. स्टार्ट राइटिंग लेटर्स टू वन अनदर अगेन, पिजन्स यूज करो, पैदल चलकर जाओ यार, पहाड़ों चढ़ो. मतलब आई फील लाइक दैट शुड बी द न्यू फ्यूचर. दैट इज हाउ आई थिंक वील बी एबल टू, यू नो, retain this a little longer, the essence of true love, emotions and all of that a little longer. What do you think?

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
2: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
2: चलो चले अलराज।
4: ब्रो, imagine you book your dream home and then drive away in a brand new Jador T2.
5: Yeah, right. I wish.
4: I'm serious. Book at Symbolic Zen Residences Alforjan before 30th of June and boom, the Jador T2 is yours.
5: And the apartments?
4: Fully furnished with panoramic balconies, smart automation and modern closed kitchens.
5: I'm going now.
4: Visit Symbolic Experience Center on Sheikh Zayed Road or call 800-5300 now.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
8: It's 34 degrees Celsius outside, bright and sunny, feels like 38, which is not so bad, relatively thoda sa cooler hai, it'll drop down to about 30 later tonight, humidity filhal hai 47% pe.
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets, spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me, Big 106.2.
5: Tum apne aap ko bahut pasand karti ho?
9: Bahut. मैं अपनी फेवरेट हूँ।
1: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Lemonade Mix with Zohra on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ये खेल खेल में क्या हो गया यार. Younger people, the younger generation, the Gen Z is now agreeing with what millennials are saying. I thought this was a war that would go on for, you know, आने वाले पता नहीं इतने साल, but I feel like the Gen Z has now started to understand कि हम millennials जो बोलने की कोशिश कर रहे थे, जो समझाने की कोशिश कर रहे थे, I think we might just be on the same page very very soon, because article पे article आए जा रहे हैं that the younger people are now wanting things, you know, our way, the way that we wanted to do things, what, how we have actually done things in our younger days. The Gen Z wants to do the same right now. So basically, now the younger generation is saying that they would prefer a world without the internet. ये हम बोलते आते हैं, इनफैक्ट ये हमारे बड़े भी बोलते थे, बूमर्स हमें बोलते आए थे कि इंटरनेट से पहले वाले दिन ही अच्छे थे. हमारी जनरेशन एक जनरेशन है दैट हैज सीन बोथ, राइट. हमने इंटरनेट से पहले वाले, यू नो, वो फेज भी देखा है, इंटरनेट के बाद वाला भी फेज देखा है. द राइज वीव सीन, एंड वीव सीन इट ऑल, सो विच इज़ वाई आई फील लाइक हमें दोनों, यू नो, साइड्स का के मायने पता है. बट Gen Z ने नहीं देखा है. Gen Z इज ओनली सीन अ वर्ल्ड फुल ऑफ द इंटरनेट, एंड नाउ दे आर फीलिंग कि यार ये इंटरनेट ना ही होता तो अच्छा होता. सो नाउ दिस न्यू रिसर्च वॉज पब्लिश्ड बाय ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, and it found that 47% of the younger generation between like 16 to 21 of age, they prefer to be in a world without the internet, because they said that, you know, any kind of social media curfew would mean that it would improve their lives, kyunki ye social media has completely taken over. It has taken over your life, it has taken over you mentally, psychologically, in every way, and you feel like, you know, aapke haath ab band chuke hain. Aap na karna bhi chaho to subconsciously aap wahi cheez karne lag jate ho. Which is why a curfew would actually improve your lives. And the survey said that nearly 70% of the respondents feel worse about themselves after using social media. So imagine kis had tak ka ek impact padta hai social media ka aapke upar, that you start feeling worse about your own self. And I think that is just sad. 42% of the people admitted to lying to their parents about what they do online. Imagine, I'm actually liking that this generation is now, in their terms, so woke that unhe khud hi ye realize ho raha hai कि यार ये जो हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और हमें अच्छा नहीं भी लग रहा है, एंड वी वांट दिस टू चेंज. सो नाउ दीज यंगर जनरेशन वाले जो बच्चे हैं, दे हैव डिसाइडेड कि यार इंटरनेट ना हो तो अच्छा है, या फिर अगर इंटरनेट हो भी तो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ कर्फ्यू ऑन सोशल मीडिया, सो दैट ये यंगर जनरेशन की लाइफ खराब ना हो. एंड आई थिंक आई एब्सोल्युटली अग्री विद देम, बिकॉज दैट्स व्हाट वी मिलेनियल्स हैव बीन सेइंग, वी नीड टू लर्न टू फाइंड अ बैलेंस इन थिंग्स. व्हाट डू यू हैव टू से? डू यू फील लाइक इंटरनेट के बिना वाला टाइम जो था वो बेटर था, जब लोग ज्यादा मेहनत करते थे रिसर्च वगैरह करने में? और डू यू थिंक कि नहीं, अब इंटरनेट की इतनी आदत हो गई है कि अब अगर ये निकाल दिया तो हम थोड़े हैंडीकैप से हो जाएंगे? लेट मी नो योर थॉट्स. 800-1062 इज द नंबर.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: Listen to her every day.
5: Mugembo! खुश हुआ।
6: जेंजी ने आर्यन नाम रेड फ्लैग घोषित कर दिया है।
7: मैं खुद जेंजी हूँ तो मुझे बहुत दुख है इस बात का।
6: दुख क्या है, मतलब आपके नेम की ही इमेज है कि कई आर्यन ने लड़कियों का दिल तोड़ा होगा इसलिए सारे आर्यन बदनाम है। तो आर्यन तुम रेड फ्लैग हो नहीं हो?
7: मैं डेफिनेटली नहीं हूँ, अपने आप को तो नहीं मानता हूँ, बाकी तो लोगों को पता।
6: रेफरेंस चेक के लिए 3 एक्स गर्लफ्रेंड्स के नंबर मुझे चाहिए। मतलब 3 एक्स गर्लफ्रेंड है, मतलब तो रेड फ्लैग है ना?
7: नहीं नहीं, ये तो बस खाली कहने की बात है।
6: अच्छा तो नहीं है, एक भी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है?
7: डेफिनेटली नॉट।
6: क्या कर रहे हो तुम लोग जवानी में? हमारी जवानी में हम एक साथ 3-3 घुमाते थे। जब हमारी उम्र के हो जाओगे ना बेटा, बिकम 30 ईयर ओल्ड देन यू विल रियलाइज के तब कर लेते तो अच्छा रहता था, अभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास।
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
8: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
9: बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
10: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
6: 34 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड, आज हाईज जाएंगे 38 तक। हाई फिलहाल तो नहीं बढ़ने वाला है, बट इट स्टिल फील्स एज हॉट एज 39। ह्यूमिडिटी एट द मोमेंट इज एट 49%। गुड मॉर्निंग, यू विद मी ज़ोहरा।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

दयाल विद बदतमीज दिल जो मानता ही नहीं है यार. Right here on Big 106.2, this is the beat of Bollywood. लेकिन मेरी बात मानो तो आपको मेरे साथ रहना चाहिए एटलीस्ट आने वाले और दो घंटे के लिए, विच इज बेसिकली टिल व्हेन आई एम गोइंग टू बी विद यू लाइव ऑन द बिग मिक्स. क्यों? क्योंकि अगले घंटे जो है, आई हैव स्पोकन टू समवन वेरी वेरी स्पेशल अ फ्यू डेज अगो एंड आई फील लाइक यू नीड टू बी पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्जेशन. यू हैव टू हियर हिम टॉक अबाउट दिस अपकमिंग मूवी, बिकॉज अगर आप इनकी मूवीज के फैंस रहे हो, है ना, इम्तियाज अली की मैं बात कर रही हूँ. आई मैनेज टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद हिम अबाउट हिज अपकमिंग मूवी मैं वापस आऊंगा. ब्यूटिफुल मूवी है, दिलजीत इज इन द लीड, वेदांग रायना है इसमें, शर्वरी है इसमें, नसीरुद्दीन शाह है इसमें. सो यू नो इट्स अ ब्रिलियंट कास्टिंग एंड ही स्पोक अबाउट यू नो द मूवी, द आइडियोलॉजी बिहाइंड इट, हाउ द नेम केम टू बी, द सॉन्ग्स, ऑल ऑफ दैट. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइटफुल कॉन्वर्जेशन विथ हिम विच यू हैव गॉट टू टेक अ लिटिल टाइम आउट फॉर. सो मेक श्योर दैट यू आर विथ मी आने वाले और दो घंटों के लिए. माई नेम इज ज़ोहरा विथ यू अंटिल टू ऑन द बिग मिक्स.

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, VIP सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Missed your morning buzz?
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
0: ये सुनो।
3: राहुल, गुड मॉर्निंग।
4: हाय, गुड मॉर्निंग सर।
3: जब मैं कोई सवाल पूछता हूँ रेडियो पर, जवाब से मैं बता पाता हूँ क्वाइट ऑफन कि बंदा काम क्या करता होगा, है ना? सो द क्वेश्चन वाज कि अगर आपके ट्रिपलेट्स होते तो क्या नाम रखते, और राहुल ने क्या कहा?
4: अल्फा गामा बीटा।
3: अल्फा बीटा गामा, यानी कि राहुल यू आर एन इंजीनियर, टेल मी।
4: No, I'm not an engineer at all.
3: You're not an engineer at all. Oh my God, मेरे फंडे क्लीन ही हैं। How did you think of alpha, beta, gamma then, यार? मतलब मुझे लगा कि 5-6-7 साल जो रट्टा मारते रहते हैं हम लोग, दुखड़ा रोते रहते हैं ग्रीक में।
4: It just came in my mind.
3: Wow, you're not an engineer.
4: One more name. हाँ. Normally in airline we have these abbreviations, right?
3: Right, exactly.
4: The way you pronounce it may be different and they may not understand it. So
3: yeah.
4: A for Alpha, B for Bravo, C for Charlie. These are the signs which they use.
0: Energy and action. Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big. Woo! Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उदी बाबा।
2: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Mix, brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. Missed your morning buzz?
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
2: ये सुनो।
4: राहुल, गुड मॉर्निंग।
5: हाय, गुड मॉर्निंग।
4: जब मैं कोई सवाल पूछता हूँ रेडियो पर, जवाब से मैं बता पाता हूँ क्वाइट ऑफन कि बंदा काम क्या करता होगा, है ना? सो द क्वेश्चन वाज कि अगर आपके ट्रिपलेट्स होते तो क्या नाम रखते, और राहुल ने क्या कहा?
5: अल्फा गामा बीटा।
4: अल्फा बीटा गामा, यानी कि राहुल यू आर एन इंजीनियर, टेल मी।
5: No, I'm not an engineer at all.
4: You're not an engineer at all? Oh my God, मेरे फंडे क्लीन नहीं है। How did you think of alpha, beta, gamma then, यार? मतलब मुझे लगा कि 5-6-7 साल जो रट्टा मारते रहते हैं हम लोग, दुखड़ा रोते रहते हैं ग्रीक में।
5: Just came in my mind.
4: Wow, you're not an engineer, nothing to do.
5: Normally in airline we have these abbreviations, right?
4: Right, exactly.
5: So the way you pronounce it, it may be different and people, they may not understand it. So
4: yeah.
5: A for Alpha, B for Bravo, C for Charlie. These are the signs which they use.
2: Energy and action. Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
6: हांजी, क्विक लुक ऑन द रोड्स। इफ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स शारजा, E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिल जाएगा स्टार्टिंग टू R4। इनफैक्ट मुहैसना फोर्थ के पास एक व्हीकल ब्रेकडाउन की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक 6-7 मिनट का वहां पर डिले। उसके अलावा अगर आप है D89 एयरपोर्ट स्ट्रीट क्रॉसिंग E11 शेख राशिद रोड, तो आपको मिलेगा हैवी ट्रैफिक वहां पे, 4-5 मिनट का डिले है। उसके अलावा थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक आपको मिल जाएगा अल रिगा एरिया के पास, विच इज अराउंड अल सबका स्ट्रीट इज वेल, ओल्ड बलादिया के पास अराउंड 15-minute delay on that road because of a road closure. Any other update, आप message करके बता सकते हैं 4305 पे।
2: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big.

0: splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. InsuranceMarket.ie.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइंस। इन कॉइंस को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: बॉलीवुड
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
3: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
4: It's still 34 degrees Celsius, लेकिन it feels like 41 right now. Humidity बढ़ते हुए at 52% at the moment. Lows आ जाएंगे सिर्फ 31 तक.
3: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big. Woo! Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: 101.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Listen to her every day.
3: Mugambo! खुश हुआ
4: जेंजी ने आर्यन नाम रेड फ्लैग घोषित कर दिया है।
5: मैं खुद जेंजी हूँ तो मुझे बहुत दुख है इस बात का।
4: दुख क्या है, मतलब आपके नेम की ही इमेज है कि कई आर्यन ने लड़कियों का दिल तोड़ा होगा इसलिए सारे आर्यन बदनाम है। तो आर्यन तुम रेड फ्लैग हो नहीं हो?
5: मैं डेफिनेटली नहीं हूँ, अपने आप को तो नहीं मानता हूँ, बाकी तो लोगों को पता।
4: रेफरेंस चेक के लिए 3 एक्स गर्लफ्रेंड्स के नंबर मुझे चाहिए। मतलब 3 एक्स गर्लफ्रेंड है, मतलब तो रेड फ्लैग है ना?
5: नहीं नहीं, ये तो बस खाली कहने की बात है।
4: अच्छा, तो नहीं है, एक भी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है?
5: डेफिनेटली नॉट।
4: क्या कर रहे हो तुम लोग जवानी में? हमारी जवानी में हम एक साथ 3-3 घुमाते थे। जब हमारी उम्र के हो जाओगे ना बेटा, बिकम 30 ईयर ओल्ड देन यू विल रियलाइज के तब कर लेते तो अच्छा रहता था, अभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास।
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Nancy. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
4: Traffic का हाल फिलहाल, it is getting a little better at the moment. E311 Sheikh Mohammed bin Zayed Road, थोड़ा सा light से moderate traffic आपको मिल सकता है. This is starting Al Khawanij, going all the way until Sharjah Industrial Area 13, moderate traffic है. 8 से 10 मिनट का आपको वहाँ पर मिल जाएगा थोड़ा सा delay. थोड़ा सा traffic आपको मिलेगा E44 Rasalkhore Road पे. This is around the D3 junction, the usual about a 7 minute delay on that road. एक minor car accident हुआ D72 Al Sahel Street पे, which is causing about a 2-3 minute delay. Any other traffic update, you can let us know on 4305.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
6: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
7: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
0: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड, द बिग जिल,
3: ऑल माय फेवरेट म्यूजिक इन वन स्पॉट,
2: वीकडेज 9 PM टू 12 AM ऑन बिग 106.2, brought to you by insurancemarket.ae. Big 106.2.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

तेरे मेरे बीच में क्या है, क्या है नहीं, फिलहाल कौन है पूछना चाहिए, क्योंकि उज्ज्वल आ चुके हैं आपके मेरे बीच में. ही इज गोना कीप यू कंपनी अप नेक्स्ट विद द बिग लाइफ. मेरी आवाज, मेरा अंदाज अगर आपको पसंद आया हो, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ज़ोहरा अमीन, वहां पर मेरा हैंडल. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन 106.2 बिग एफएम फॉर ऑल डेली फन कंटेंट. आई विल नाउ सी यू टुमारो मॉर्निंग 10 से 2 के बीच ऑन द बिग मिक्स. अंटिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। देख।

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Insurancemarket.ae. Over 15 years, I have stood by the UAE. I may sound a little fresher now, but I am still the same Alfred you love.
2: हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक ही बार होती है, और प्यार भी एक ही बार होता है। बार बार नहीं होता।
0: This is Ujjwal on the Big Life on Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Mix miss kiya gaya.
3: कर ही नहीं सकते। चाहो भी तो नहीं कर सकते।
4: You know, we've done this in, you know, our life at some point. हम सब ने ये किया है कि हमें या तो अपने लिए या तो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी ना किसी के लिए कुछ खरीदना हो, हमारी जेब में पैसे नहीं होते थे तो मम्मी पापा के पैसे लेने होते थे. अब अगर सीधे मांगने पर नहीं मिलते थे तो कभी कभी हमें टेढ़े तरीके यूज करने पड़ते थे, यू नो, चुरा लिया जाके, थोड़े बहुत पैसे निकाल लिए, 20 दिरहम 50 दिरहम जो भी है निकाल लिए जाके, एंड मतलब जाके ले लिया जो भी लेना था अपने पार्टनर के लिए. यहाँ पे ऐसी छोटी मोटी चोरियां नहीं चलती, यहाँ पे इन्हें कुछ बड़ा करना था. तीन लड़के नागपुर से आए, उन्होंने डिसाइड किया हम चुराएंगे लग्जरी टैप्स, नल. हम लग्जरी नल चुराएंगे, उन नलों को बेच के हम अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए आईफोन्स खरीदेंगे. इन लोगों ने 11 लाख वर्थ के नल चुरा तो लिए, हम नल जब बेचने गए हैं वहां पे जो खरीदने वाला कहते हैं नल कौन लेगा इतने पैसों के लिए, वो भी 11 लाख. उन्हें टोटल कुल मिला के मिले सिर्फ 20,000, और तीन क्या एक भी आईफोन नहीं खरीद पाए.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 10 AM to 2 PM. The Big Mix with Zohra only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour brought to you by insurancemarket.ae.

0: splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. Insurance Market.
1: Song of the Hour, आपने सुना नेहा भसीन की आवाज में. तो ट्रैक इस कुछ खास उज्जवल खन्ना के साथ बिग 106.2 पे. खास ही है यार.
2: The Big Life with उज्जवल on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: खास ही नहीं, मतलब खास ही है. खास ही है खाना खाना, स्पेशली जब स्नैक्स की बात आती है. तो माय गॉड, हम सारे एक साथ सेलिब्रेट करते हैं. मतलब इतना हमें चाटों का चस्का है, स्पेशली जोहरा, उसको तो इतना ज्यादा है. ये करामा में कोई दुकान नहीं छोड़ती. एक एक दुकान पे इसने पानी पूरी खाई है. हर एक दुकान पे इसको पता है कि 5 दिरहम की कहाँ मिलती है, 7 दिरहम की कहाँ मिलती है, 10 दिरहम की कहाँ मिलती है. जब भी आपको खोमचा सेक्शन जाना हो या फिर चाट सेक्शन जाना हो, आप हमेशा जोहरा के इंस्टाग्राम पे डीएम करना कि जो कहाँ जाते हो. वहाँ पे वो बता देगी कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सबसे सस्ता माल मिलेगा और डिलीशियस भी होना चाहिए ना. डिलीशियस. फिलहाल दिस इज वेरी डिलीशियस लिप स्मैकिंग स्नैक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे इन माय फूड ट्रेल्स एंड इट इज सो पॉपुलर बैक इन बॉम्बे. ओके, आई एम स्पाइसी स्नैक मेड फ्रॉम पफ्ड राइस एंड वेजीज. आई एम अ स्पाइसी स्नैक मेड फ्रॉम पफ्ड राइस एंड वेजीज, अ पॉपुलर स्ट्रीट फूड दैट मेक्स यू फील ज़ेस्टी. I'm a spicy snack made from puffed rice and veggie, a popular street food that makes you feel zesty. What am I talking about? Which is this street food item? Iske andar badhiya generous amount of khira, tomato pyaz, nimbu shimbu, aapki chutniya, everything, and puffed rice just makes it magical. 800-1062 is my toll free number, which is 800-1062. Like, this song is magic. I love this man. James ki awaaz hai. I love every song of James. In fact, agar kabhi bhi jamming karni ho to James ke gaane play kar do and you'll be like good for a good house party. Take it away aapke saath until 5. This is The Big Life.

0: समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्ज्वल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जानो।
2: सुनो जियो खुश रहो मुस्कुराओ क्या पता
1: कल हो ना हो।
3: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: Big 106.2. That's My Song by E.

तुमसे मिलके मैंने जाना ये प्यार भी अजीब चीज है। इंसान खुद को भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है?

0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता।
0: This is Ujjwal on the Big Life on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour brought to you by insurancemarket.ae.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: थिंक कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव, थिंक अगेन। Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: The beat of Bollywood.

0: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्ज्वल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: सुनी थी चौहान के अमीषा पटेल स्पेशल आप सुन रहे हैं बिग 106.2 पे उज्ज्वल खन्ना के साथ। कुछ उनके 2000s के ब्लॉकबस्टर गाने, ये भी बहुत ही बड़ा गाना था एंड उससे भी बड़ी थी ये फिल्म जिसने अमीषा पटेल को किया एस्टैब्लिश। इट्स अ बर्थडे टुडे, शी इज टर्न 51, कोई और भी 51 साल का हुआ था ना थोड़ी देर, शिल्पा शेट्टी, यस शिल्पा शेट्टी, शी ऑल्सो टर्न 51, अमीषा हैज ऑल्सो टर्न 51, बट ऑफकोर्स अमीषा की जो एंट्री थी वो काफी लेट थी इनटू बॉलीवुड, शिल्पा शेट्टी शी स्टार्टेड मच अर्लियर। हैविंग सेड दैट, कमन अप यार वाज हिस्टोरिक, इट वाज अ ब्लॉक बस्टर एंड सम ऑफ द सीन्स आर सो नाइस, और अभी तक आपको रटे पड़े हैं वो सीन, है ना, चाहे वो ऋतिक रोशन का जो डबल डॉपलगैंगर वो है या फिर ये कश्ती वाला सीन जब ये बीच पे मरून हो जाते हैं एक आइलैंड पे एंड दैट्स व्हाट दे डिस्कसिंग।
1: ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम रात को दारू पीती, ना तुम्हारा दिमाग खराब होता और ना तुम इस बोट में आके बैठती।
2: ए मिस्टर, तुम एक बात भूल रहे हो, ना तुम फ्लर्ट करते, ना मैं दारू पीती, ना मेरा दिमाग खराब होता और ना मैं इस बोट पर आके बैठती।
1: लगता है रात की उतरी नहीं तुम्हारी, बिना सोचे समझे कुछ भी पकती जा रही हो। तुम जानते नहीं हम किस मुसीबत में फंस गए।
2: मुसीबत कहाँ है मुसीबत? ऊपर नीला नीला आकाश, खुली खुली हवा और चारों तरफ पानी ही पानी।
1: हाँ हाँ, जब प्यास लगेगी ना तो पीना ये नमक वाला पानी, और जब भूख लगेगी तो खाना ये खुली खुली हवा, और जब रात में ठंड लगेगी तो ओढ़ना अपना ये नीला नीला आकाश।
2: तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा?
1: यही कहेगा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और हमें यह सुनेगा कौन या है कौन?
2: मैं सुनूंगी ना, तुम कहो।
1: अब तुम चुप हो जाओ और मुझे सोच लो कि हम क्या करें।
2: मैं बताऊं क्या करें?
0: चलो छुपा छुपी खेलते हैं। अभी तक सब रटा पड़ा है। व्हाट अ सेंसेशन ऋतिक वाज एंड दोज डेज, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई कुछ नहीं, और इतना बड़ा इम्पैक्ट था इस फिल्म का। आई थिंक इसलिए इतना बड़ा इम्पैक्ट था, अदरवाइज सब लोग आके क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते सोशल मीडिया के थ्रू। फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर, उसी फिल्म से गाना था ट्रैक इस प्यार की कश्ती में, उदित नारायण की आवाज, ऑल अबाउट अमीषा पटेल, इट्स हर बर्थडे, दिस इज द बिग लाइफ।
3: Beat 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जानो।
3: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता
2: कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइंस। इन कॉइंस को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Hair color, covering the changes in the world and covering changes in your hair right now. This is Fan Network News from the BBC.
2: BBC News with Tom Sanders. A pause in fighting between Iran and Israel appears to be holding after the biggest test so far of the ceasefire agreed in April. But violence has continued in southern Lebanon. The Israeli military has issued a new evacuation order for Tyre, including the city's Christian quarter. 20 countries have released a joint statement describing the humanitarian situation in Gaza as catastrophic and calling on Israel to allow more aid into the territory. The United States has added several major Chinese businesses to a list of companies it claims are linked to China's military. Among them are the e-commerce giant Alibaba and the electric car maker BYD. Honduras has approved a series of reforms to tackle the murder of women, including longer jail sentences. The country has the highest rate of femicide in Latin America. Ukrainian officials say Russian strikes overnight have killed at least 4 people in the Kharkiv region. Ukraine, meanwhile, has continued to launch strikes at Russian-occupied Crimea. Russian investigators say an explosive device has destroyed a car and killed its driver in a town close to Moscow. The driver's identity has not yet been given. More than 40 people are now known to have died in an earthquake that struck the southern Philippines on Monday. Tens of thousands are without power. Authorities warn that the number of dead could rise. The car manufacturer Stellantis has announced a global recall of more than a million Jeep SUVs because of fire risks. The problem relates to the wiring of the power steering. President Trump has been booed at a basketball match in New York. He was there to watch the New York Knicks lose to the San Antonio Spurs in Game 3 of the best-of-seven NBA Finals. BBC News.
1: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant colour, natural finish, all in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour, made in Italy. Big 106.2.
3: कहाँ से शुरू करूँ? बस इतना समझ लो कि उस जैसा मैंने आज तक कोई देखा ही नहीं. कभी वो मासूम है, तो कभी शैतान.
1: When the afternoon slows down, he speaks of love, life and light. The Big Life with Ujjwal on Big 106.2, the beat of Bollywood.
4: Hello, hi, good evening to you. Big 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ हैं. Final hour of my show. कोई भी गाना आप सुनना चाहते हैं, कोई भी फरमाइशें आपकी हैं, तो हम आपकी फरमाइशें ज़रूर पूरी करेंगे. आपको बस सिंपली जाना है Big 106.2 के Instagram handle पे. You can drop in your song request, जो भी आपका मूड है, जो सा हिसाब किताब है. Sometimes ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं कि मतलब रोने टाइप के गाने भी सुनना चाहते हैं लोग. एंड लेट मी टेल यू, यू डोंट हैव टू जज एनीबडी. ये जो बिरहा वाले गाने होते हैं ना, जो सैड सॉन्ग्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड गाने होते हैं, है ना? क्योंकि आप किसी के मेंटल स्पेस को थोड़ा ना जज कर सकते हो, या उस सिचुएशन में वो गाना क्यों याद आ गया. यू कैन नॉट एवर जज. एंड दैट्स व्हाई यू नो देयर वाज ऑलवेज अ सैड सॉन्ग इन एनी फिल्म. यू नो दैट्स प्रैक्टिस इन बॉलीवुड ड्यूरिंग दोज डेज. अभी भी होते हैं सैड सॉन्ग्स, बट उसमें कुछ अलग ऑल्टरेशन होता है विद म्यूजिक एंड अदर एलिमेंट्स. लेकिन सैड सॉन्ग की बहुत बहुत डिमांड होती है. फिलहाल सैड हो या हैप्पी, कोई भी सॉन्ग, आई एम हियर टू प्ले. एंड ऑफ कोर्स द मूड इज सूदिंग, नाइस एंड रिफ्रेशिंग. द फर्स्ट ट्रैक अप इज वेरी वेरी रोमांटिक गाना, भाग मिल्का भाग से, ट्रेडिशनल फोक पंजाबी म्यूजिक. इन द ट्रैक इज ओर अंग्रेज मेरे आपके साथ फॉर वन मोर आवर. दिस इज द बिग लाइफ, बिग 106.2 पे. वी आर अ पार्ट ऑफ फन एशिया नेटवर्क.

0: शफकत मानत अली की आवाज, द ट्रैक इज तेरी झुकी नजर नहीं, आंखें फाड़ फाड़ कर, आंखें खोल के, नजरें एकदम खोल कर हम मैचेस देखते हैं। फीफा अब शुरू होने वाला है फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस, एक अलग राइवलरी, एक अलग अलग कैंप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फैन जोन्स, एवरीवन वुड बी एक्टिवेटेड। उज्ज्वल खन्ना के साथ बिग 106.2, वी आर पार्ट ऑफ फन एशिया नेटवर्क, एंड ऑफ कोर्स फीफा शुरू होने वाला है 11 तारीख से 19 जुलाई तक। लास्ट टाइम आई रिमेम्बर जब फीफा हुआ था तब सर्दी का टाइम था ना, आई वेगली रिमेम्बर दैट, यू नो व्हाई, बिकॉज आई वाज इन वन ऑफ दोस फैन जोन्स, एंड भाई क्या माहौल होता है वहां पे। अगर आपको पता भी नहीं है ना गेम, तब भी आपको मजे आते हैं वहां पे जस्ट माहौल देखने के, और कैसे लोग मतलब बावले होते हैं, स्पेशली यू नो इफ यू गेट इनटू दोस वी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, जब क्वार्टर्स और सेमीज और वो सब शुरू हो जाता है, बट इवन द ग्रुप स्टेजेस, आई थिंक द मैचेस वुड बी पल्सेटिंग फैंटास्टिक। एंड इसलिए बहुत सारे फैन जोन्स दुबई में बनाए गए हैं, एंड ऑल यू कैन डू इज आप उन फैन जोन्स में जाइए, थोड़ा सा पैसा खर्चिए और फ्री वाईफाई का लाभ उठाइए। ओके, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। ये जो फीफा वर्ल्ड कप फैन जोन्स हैं, ये पाम जुमेरा 2.0 वहाँ पर होने वाला है एट मैरियट रिजॉर्ट। इट्स रनिंग फ्रॉम 11th ऑफ जुलाई टू द जुलाई 19th। फ्री एंट्री है फैन जोन की, एंड विल बी ओपन डेली फ्रॉम 5 PM टिल 3 AM। जायंट इंडोर स्क्रीन्स लगेंगी विद क्लियर व्यूज फ्रॉम एवरी सीट, प्ले स्टेशन गेमिंग स्टेशन होंगे, इंटरैक्टिव डार्ट्स होंगे, DJs, and of course there'll be happy hour as well. So this is one of the fan zones, and imagine the kind of fan zones that would be spread across the city. The first match is between Mexico and South Africa, and let's see who gets that. Kaun jeete? I think Mexico, they are favorites to win this in the group A sequence. Ujjwal Khanna ke saath, I don't know which team are you rooting for, but I have a very strong feeling that Portugal would lift World Cup 2026.
1: Ek tarfa pyar ki taqat hi kuch aur hoti, aur rishton ki tarah to logon mein nahi batte, sirf mera haq hai is pe, sirf mera. Agar baazi ishq ki baazi hai to jo chahe laga le, dar kaise.
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: This June, take your shot at millions with Big Ticket.
5: Score a guaranteed 25 million dirham grand prize.
4: Plus, 5 more winners take home 1 million dirhams each.
5: And weekly cash prizes still to be won.
4: So, what are you waiting for?
5: Buy your ticket now at bigticket.ie.
6: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
7: Listen to her every day.
8: Mugambo! खुश हुआ।
9: जेंजी ने आर्यन नाम रेड फ्लैग घोषित कर दिया है।
10: मैं खुद जेंजी हूँ तो मुझे बहुत दुख है इस बात का।
9: दुख क्या है, मतलब आपके नेम की ही इमेज है कि कई आर्यन्स ने लड़कियों का दिल तोड़ा होगा, इसलिए सारे आर्यन बदनाम है। तो आर्यन तुम रेड फ्लैग हो नहीं हो?
10: मैं डेफिनेटली नहीं हूँ, अपने आप को तो नहीं मानता हूँ, बाकी तो लोगों को पता।
9: रेफरेंस चेक के लिए 3 एक्स गर्लफ्रेंड्स के नंबर मुझे चाहिए। मतलब 3 एक्स गर्लफ्रेंड है, मतलब तो रेड फ्लैग है ना?
10: नहीं नहीं, ये तो बस खाली कहने की बात है।
9: अच्छा, तो नहीं है, एक भी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है?
10: डेफिनेटली नॉट।
9: क्या कर रहे हो तुम लोग जवानी में? हमारी जवानी में हम एक साथ 3-3 घुमाते थे। जब हमारी उम्र के हो जाओगे ना बेटा, बिकम 30 ईयर ओल्ड, देन यू विल रियलाइज के तब कर लेते तो अच्छा रहता था, अभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास।
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Nancy. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
0: हेलो, हाय, गुड इवनिंग टू यू। बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ हैं। ट्रैफिक का हालचाल मोहसिना के आसपास है तो ट्रैफिक मिलेगा तो स्लो मूविंग। अगर आप एमिरेट्स रोड पे हैं इस वक्त, एंड इफ यू आर दुबई बाउंड, तो अराउंड 15 मिनट्स का डिले वहां पे दिखा रहा है। एयरपोर्ट रोड D89 के आसपास आपको मिलेगा थोड़ा बहुत ट्रैफिक। वहां पे भी शेख मोहम्मद बिन जायद रोड इस वक्त ठीक ठाक चल रही है, ज्यादा कुछ ट्रैफिक मेस है नहीं। अल्तवार 3 के आगे आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा। अलखेल रोड पे अगर आप हैं तो ट्रैफिक मिलेगा वहां पे भी। एग्जीक्यूटिव टावर्स अगर आप हैं इस वक्त, शेख एक जायद रोड पे, तो उसके जो बाई लेन्स होते हैं वहाँ पे आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। बात करूँ मलिहा रोड की, तो ट्रैफिक आपको वहाँ पे भी मिलेगा। अगेन G67 लतीफा बिन मोहम्मद स्ट्रीट पे आपको 2 मिनट का डिले मिलेगा। एनी द ऑब्स्ट्रक्शन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन 4305 व्हिच इज 4305। श्रेया घोषाल की आवाज फ्रॉम द फिल्म बैंड बाजा बारात। द ट्रैक इज आधा इश्क आपके साथ अंटिल 5।
2: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: Wow, your hair color looks stunning.
3: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
2: Yeah, right.
3: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
2: Really?
3: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
2: I'm buying it right now.
3: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
4: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
5: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: ऑलमोस्ट 25 मिनट डिले एट द मोमेंट इफ यू ऑन द शेखजाद रोड। ये तो शुरुआत है आगे आगे। देखो होता है क्या, काफी स्लो मूविंग है मोरिफ टू मोहेसना, बिल्कुल बम्पर टू बम्पर सिचुएशन है मोरिफ से मोहेसना, गेट्स बेटर पोस्ट दैट नादलामा राशिदिया दुबई फेस्टिवल सिटी, हैवी ट्रैफिक ऑन द हेसे स्ट्रीट, जसीत स्ट्रीट से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। देयर आल्सो ट्रैफिक एट द मोमेंट मरीना से जेबीआर। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू रिपोर्ट, लेट मी नो 800-1062 पर।
5: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
7: Hey, budde.
8: Namaste.
7: पहले आप आदत कीजिए, आप गुस्सा नहीं होंगे।
8: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा, आप बात बताइए।
7: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा।
8: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
7: गुस्सा आ जाएगा, सब आ रहा है, गुस्सा आ जाएगा,
8: आ रहा है। देखिए ये गुस्सा नहीं है।

0: गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा जाएगा, गुस्सा आ रहा है देखिए।
0: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, you have Big Thrill with Nancy right here on Big 106.2, part of Fun Asia Network. We're playing the 5-second rule. We've got Arjun. Hi, Arjun.
2: How are you, Nancy? Good evening.
1: I'm good. Aapki awaaz badi achhi hai yaar. Matlab, you know.
2: RJ ki tarah. Thank you.
1: Kuch ho raha hai.
2: Very good. I hope all is well.
1: Oh, अच्छा अर्जुन, I was just talking about matrimony. आपने एडवाइट दिया है matrimony में कभी?
2: नहीं जी, मेरी तो शादी हो चुकी है.
1: नहीं नहीं, मतलब जब हुई थी तब दिया था एड के नहीं दिया था?
2: ऑनलाइन दिया था. हाँ
1: दिया था ना,
2: काफी टाइम हुआ है. याद आया.
1: So, अभी एक matrimony ad viral हो रहा है जिसमें the only condition is the bride to be should not be addicted to social media. What do you think about this?
2: I just heard that, by the way. I think काफी dicey है. उनकी तरफ से देखा जाए तो I think he makes some sort of sense. But yeah, I mean in today's day and age, he doesn't say कि you cannot be on it 100%. आपको addict नहीं होना चाहिए, बस यही कह रहे हैं वो. तो I think वो थोड़ा देख पाल कर आपको चलना चाहिए मेरे ख्याल से.
1: But अगर
2: I could also be wrong.
1: Your partner starts making TikToks and reels, you're okay with that?
2: That's fine, yeah.
1: Such as a long green as flag. Such a green flag. Addict क्या होता है जो पूरे time जो है आप पे ध्यान ना दे but Instagram पे ध्यान दे?
2: नहीं, but there are people who kind of leave aside their main goals and main core work जो दिन का होता है वो you know हल्का लेकर पूरा time social media पे होते हैं.
1: I am that person. मैं हूँ वो people that you're talking about. मेरा बिल्कुल scope नहीं है.
2: आपका काम demand करता है वो, तो that's fine.
1: Sir, अगर आप किसी दिन मेरा algorithm देखोगे ना, आप मुझसे बात करना छोड़ दोगे. Anyway, we'll play the 5-second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. Three cheeze aapne batani hai 5 second ke andar. Are you ready?
2: Yep. I hope I crack this. Okay, ready.
0: 5 second rule.
3: Oh yeah.
1: Quickly name 3 Sunny Deol ki movies.
2: Gadar, Ghayal, Ghatak.
1: Very nice. 4 second ke andar. 3 things that you can make out of milk and sugar.
2: Rasmalai, cake.
1: ठीक है, पनीर बनता है. थ्री थिंग्स दैट यू फाइंड ओनली एट अ बीच. खत्म हो गया. क्विकली नेम 3 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनका नाम एस से शुरू होता है.
2: श्रद्धा कपूर, सानिया मल्होत्रा एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा.
1: ऑलमोस्ट देयर. बड़े अनकन्वेंशनल लोग आपने बताए हैं. मूविंग ऑन, 3 थिंग्स दैट यू शुड नेवर एवर डिस्कस विद योर वाइफ.
2: वाओ, गुड वन.
1: फंस गए अर्जुन.
2: एक्चुअली दिस शुड बी ऑन द पोल फॉर योर शो. ये अच्छा अच्छा रिस्पॉन्सेस मिलेंगे आपको.
1: या डू यू थिंक मेन वुड शेयर द रियलिटी? दे विल टेल मी और एनीवन थिंग्स दैट दे नेवर एवर शेयर विद देयर वाइफ्स.
0: 5 second rule.
3: Oh yeah.
1: Not bad, Arjun. For the first time, you played really well. You got almost all the answers right. But ये बीवी वाले में अक्सर जो है वो husbands अटक जाते हैं. I hope you had fun.
2: Oh, good fun. Thank you for having me on the show.
1: You have a great evening, Arjun. Bye.
2: You too. Bye.
1: Yeah. 5 second rule. Like I said, ये sound बहुत easy करता है, but इतना आसान है नहीं. आपने खेलना है तो call करना बहुत आसान है. 800-1062 पर.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae.

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: हां जी, तो ये पहले बोलने लगा. यस, दिस इज अ बिग थ्रिल राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड, कीपिंग यू कंपनी हियर अंटिल 9. आई एम मानसी, वी प्लेइंग द 5 सेकंड रूल. आई हैव जस्ट गॉट दिवेश एंड ही इज ऑल सेट टू प्ले द 5 सेकंड रूल, बट वी विल प्ले विद हिम इन जस्ट अ बिट. कमिंग अप, ब्रेक योर स्पार. And with that, the movie जिसने सारे बॉलीवुड को हिला के रख दिया है, मतलब मैंने कहा ना ये टॉपर बन चुकी है, फर्स्ट बेंचर, हमेशा अच्छे मार्क्स लाना. रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री इज वेरी वेरी स्केर्ड ऑफ धुरंधर. Coming up next, stay right here. This is the Big Thrill of Mansi.
2: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों री? तेरे बाप का माल है?
3: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
0: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
4: Burger craving? Pizza craving? Why choose when you can have both? Introducing the new Cheddar Burger Pizza Collection from Papa John's. Dive into Double Cheddar Nashville, or the Juicy Chicken Burger, or the Bold Flavor-Packed Beef Burger Pizzas. It's burgers and pizza, together like never before. Papa John's. Better ingredients, better pizza. Order now.
0: Early in the morning, the Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
1: वेरी बिग ट्रैफिक. वर्का से मर्डिफ आगे मोहित ना फिलहाल एक घंटे का डिले दिखा रहा है. इसके साथ साथ राशिदिया नादल हमर, इट इज ऑल पैक्ड. देयर इज अ 52 मिनट डिले ऑन शेख जायद DIFC एंड बिजनेस वे. पूरा रूट इज काइंड ऑफ बम्पर टू बम्पर एंड जिस स्ट्रीट से मुझे बहुत डर लगता है, ऐसे स्ट्रीट में भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है. JVC से JVT फर्दर टूवर्ड्स प्रोडक्शन सिटी. एनीथिंग एल्स यू'ड लाइक टू रिपोर्ट, गेट इन टच 800-1062 पर.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Music allowed.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, we're playing the 5-second rule. This is the Big Thrill right here on Big 106.2, a part of Fun Asia Network. Divankur aa gaye hain. Hi, Divankur.
2: Hi, Mansi. Good evening. How are you?
1: I'm good. How are you? How was your day?
2: Day was fantastic, quite productive.
1: आप corporate job करते हैं क्या?
2: जी.
1: लगी
2: रहा. Oil and gas में.
1: आपकी language से लग गया. Total email वाली language है ये. Productive and fantastic. Duly noted. Regards. Thanks. Appreciate. मुझे बिल्कुल ई मेल लिखना नहीं आता है. थैंकफुली गॉड इज बीन वेरी काइंड कि मेरे काम में मुझे ई मेल लिखने नहीं पड़ते हैं. एंड थैंक्स टू चैट जीपीटी. मतलब अब तो मेरी जिंदगी चैट जीपीटी संभाल रहा है. मेरे तो डिसीजन ही वो ही लेता है. मैंने उसको दे दिया जिम्मेदारी क्योंकि मैंने जितने लिए
2: वो बहुत खराब थे. वो भी चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं.
1: हां बाबा, आई थिंक जब है तो यूज करो. Why not? It makes your life easy, right?
2: Definitely.
1: हाँ, कभी कभार पर चैट जीपीटी इतनी भारी इंग्लिश लिखता है ना ईमेल्स पर के मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ. तो मुझे लगता है ये आगे भेजूंगी तो वो सोचेगा ये कहाँ से हार्वर्ड से पढ़ के आई है भोपाल की लड़की. फिलहाल
2: भोपाल से है, very nice.
1: आप कहाँ से हैं सर? आज प्रिटी जिंटा ने अपनी मूवी अनाउंस करी है. तीन प्रिटी जिंटा की मूवीज.
2: प्रिटी जिंटा की मूवी
1: अरे सागर वाले भैया 5 seconds फटाफट खेलने का गेम है. ठीक है.
2: ओके ओके ओके.
1: क्विकली नेम 3 बॉलीवुड मूवीज जिनके टाइटल में हम आता है.
2: दिल दे चुकना सनम, हम साथ आते हैं, हम आपके हैं कौन.
1: वाह. तीन चीजें जो बेसन से बनती हैं.
2: बेसन के लड्डू, पकोड़े और बेसन का चीला.
1: अरे क्या रिदम पकड़ी है. 3 थिंग्स दैट यू पिक अप फ्रॉम अ होटल रूम.
2: Room, towel, moisturizer and teeth. Hand towel, moisturizer and coffee packet.
1: Hand towel भी चुरा लेते हो आप? हद है यार. हद है यार.
2: नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं चुराता हूँ. जो जनरिक लोग चुराते हैं उनकी बात.
1: हैंड टॉवल कोई नहीं लेता है सर. मतलब हैंड टॉवल लेना अलाउड नहीं है. कल को लोग टीवी उठा के ले जाएं. मूविंग ऑन. 3 थिंग्स

0: फिर मतलब हैंड टॉवल लेना अलाउड नहीं है, कल को लोग टीवी उठा के ले जाएं। मूविंग ऑन, थ्री थिंग्स दैट यू एब्सोल्युटली डोंट लाइक अबाउट योर वर्क।
1: वर्क माय वर्क, लेस वर्क, नॉट ट्रैवलिंग एंड
0: अरे लेस वर्क क्या होता है, टाइम खत्म हो गया, मतलब काम कम है और ज्यादा करना चाहते हो आप
1: जी।
0: Are you the boss?
1: Kind of in my area of work.
0: Tabhi. Only a boss can say.
1: I'm blessed with a good team. I'm blessed with a very good team.
0: I wish my boss said the same, that I'm blessed with a good team. Three things that change completely after marriage.
1: Sports aap nahi khel pate hai. And friends ke saath outing.
0: ये क्या है, स्पोर्ट्स का क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपकी बीवी भी मना करती है क्रिकेट खेलने से?
1: क्रिकेट खेलने से तो मना नहीं करती, बट हाँ कभी बैडमिंटन खेलने जाओ तो काफी लंबा नहीं खेल सकते, बिकॉज देन फिर घर आके हेल्प भी करना होता है, बच्चे का भी ध्यान रखना होता है। सो या आफ्टर आई रीच होम माय वाइफ विल बी ऑन कॉल, सो यू नो आई नीड टू मेक श्योर दैट आई फीड माय किड।
0: Green Forest, Mr. Divankur. Divankur, not bad. You played really, really well for the first time. A hit or miss tha, but most of your answers were bang on. 5 seconds ke andar. Aap mujhe bata, aapko maza aaya ki nahi? Review do meri is call ka.
1: 10 out of 10.
0: Will you be touching base again tomorrow?
1: Definitely, I'll try.
0: Chalo, you have a great evening. It was lovely talking to you. Bye.
1: Likewise, aapke saath. Thank you.
0: Bye. Yeah, yeah, 5 second rule. Aapne khelna hai, iklauta hai. Rule hai, yaar. Call karna 800-1062 par.
2: Beat 106.2. Fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: प्यार में इतनी बार धोखा खाने के बाद मैं ऑफिशियली कह सकती हूँ कि प्यार में टाइम बर्बाद मत करो, व्यापार करो, यू विल हैव अ बेटर फ्यूचर। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर व्यापार, दैट्स योर बिजनेस।
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Then Ajman Free Zone Authority ne introduce kara hai one click business license. Great news for all those who wish to open their small or medium sized enterprise. Ab aap ye kar sakte hain without any delay, with the fee starting from 5,555 dirhams. To get your business license, all you need is a business idea. Baki they'll take care of the rest. That is aapka visa, aapke bank requirements, a very quick, completely digitized process. Terms and conditions do apply. So to apply for your one click license, any other information, abhi visit kijiye afz.ae. Filhal coming up, break your spot.
2: Hello, le lo.
0: क्या लिरिक्स हैं, आलू ले लो, कांदे ले लो, स्टिल सच अ वाइब फ्रॉम वेलकम टू द जंगल कमिंग अप। आल्सो व्हेन आई कम बैक, योर चांस टू गो एंड वॉच एनी मूवी दैट यू फील लाइक, यू कैन गो एंड वॉच वेलकम टू द जंगल कॉकटेल 2, जो देखनी आप देख सकते हैं। ओपन मूवी टिकट्स जीतने का मौका इन जस्ट अ बिट।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, यह Big Thrill Mansi and it's great news for Pretty Zinta fans जो IPL में गेम से ज़्यादा Pretty Zinta को देखा करते थे. She's making a comeback after almost a decade. I think last we saw her was in 2018. Movie का नाम भाईजी था. आई गई किसी को पता नहीं चला. But of course she played a very very insecure wife again opposite Sunny Deol. Now she's making a comeback Sunny Deol के साथ ही and this is her major cinematic return. Sunny Deol, शबाना आजमी. इसे प्रोड्यूस किया है आमिर खान ने. मूवी का नाम है बटवारा 1947 एंड आज ही पोस्टर जो है प्रिटी जिंटा सनी देओल अपने इंस्टाग्राम पे सुबह सुबह इन्होंने शेयर करा है एंड द मूवी इज ऑल सेट टू हिट द थिएटर्स 14th ऑफ अगस्त 2026 को. दिस मार्क्स हर ऑफिशियल मेजर कमबैक एंड नाउ इट्स प्रिटी जिंटास कमबैक. सो आई थॉट माइट एज वेल गिव यू अ चांस टू विन ओपन मूवी टिकट्स. अब शी इज डन ब्रिलियंट वर्क. वी लव्ड हर देन, we love her now, but I have to say if I had to pick my favorite Pretty Zinta movie to wo ye movie hoti. Akshay Kumar, Ashutosh Rana, Pretty Zinta and of course a young Alia Bhatt playing Reet. You don't have to tell me the movie. Sangharsh hai movie ka naam. Gaana pehchanna hai. सोनू निगम की आवाज में ये कौन सा गाना है दैट इज पिक्चराइज इन प्रिटी जिंटा. अगर आपने गेस कर लिया है 800-1062 इज द नंबर डायल योर चांस टू विन ओपन मूवी टिकट्स टू गो एंड वॉच एनी मूवी दैट यू फील लाइक.

0: she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. This is The Big Thrill. I am Mansi. Now, you will tell me that I am a new driver. Now, everyone asks me one question. Fine, laga. Why do you do this? You know, I never put out anything negative in the universe, especially when it comes to fines and spending money. But लोग मुझसे कह रहे हैं कि जब तक फाइन नहीं लगेगा तब तक आपकी एंट्री नहीं होगी इन द सीन ऑफ द ड्राइविंग वर्ल्ड. आई थिंक इट्स अ मिथ. आई एम अ वेरी सेफ ड्राइवर. मतलब अभी तक मुझे अपने स्कूल के सारे रूल्स रटे हुए हैं और आपको भी रटे होने चाहिए. मुझे समझ नहीं आता है कि आगे ट्रैफिक लाइट है, रेड दिख रहा है, फिर भी लोगों को इतनी आगे बढ़ने की जल्दी क्या होती है. हमको साथ ही रुकना है भाई, तो हॉली हॉली चलो. जब तक जाओगे तब तक ग्रीन हो जाएगा. सो या आई वॉन्ट स्पीक टू पीपल जिनका आज तक कोई फाइन नहीं लगा. ऐसा कोई है क्या जिसका आज तक फाइन नहीं लगा है? तो मुझे जरूर बताना. फिलहाल दिस आर गिविंग यू चांस टू विन ओपन मूवी टिकट्स राइट हियर ऑन बिग 106.2, अ पार्ट ऑफ फन एशिया नेटवर्क.

0: Wow, your hair color looks stunning.
1: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
0: Yeah, right.
1: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
0: Really?
1: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
0: I'm buying it right now.
1: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
2: This June, take your shot at millions with Big Ticket.
3: Score! I guarantee 25 million dirham grand prize.
2: Plus, 5 more winners take home 1 million dirhams each.
3: And weekly cash prizes still to be won.
2: So, what are you waiting for?
3: Buy your ticket now at bigticket.ie.
4: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
5: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है?
6: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
5: अलराज कहाँ है अलराज?
6: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
5: चलो चले अलराज।
7: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
8: The big mix miss kiya gaya.
9: तुम कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
10: You know, we've done this in, you know, our life. At some point, हम सब ने ये किया है कि हमें या तो अपने लिए या तो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी ना किसी के लिए कुछ खरीदना हो, हमारी जेब में पैसे नहीं होते थे तो मम्मी पापा के पैसे लेने होते थे। अब अगर सीधे मांगने पर नहीं मिलते थे तो कभी कभी हमें टेढ़े तरीके यूज करने पड़ते थे, यू नो, चुरा लिया जाके, थोड़े बहुत पैसे निकाल लिए, 20 दिरहम, 50 दिरहम जो भी है निकाल लिए जाके, एंड मतलब जाके ले लिया जो भी लेना था अपने पार्टनर के लिए। यहाँ पे ऐसी छोटी मोटी चोरियां नहीं चलती, यहाँ पे इन्हें कुछ बड़ा करना था। तीन लड़के नागपुर से आए, उन्होंने डिसाइड किया हम चुराएंगे लग्जरी टैप्स, नल। हम लग्जरी नल चुराएंगे, उन नलों को बेच के हम अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए आईफोन्स खरीदेंगे। इन लोगों ने 11 लाख वर्थ के नल चुरा तो लिए, हम नल जब बेचने गए हैं वहां पे जो खरीदने वाले कहते नल कौन लेगा इतने पैसों के लिए, वो भी 11 लाख। उन्हें टोटल कुल मिला के मिले सिर्फ 20,000 और तीन क्या एक भी आईफोन नहीं खरीद पाए।
8: Cheer your midday mood, Monday to Friday, 10 a.m. to 2 p.m. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
11: ट्रैफिक मिलेगा इस ट्रैफिक में बिजनेस बे, दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के पास भी इट्स प्रीटी पैची एट द मोमेंट, एंड नियर अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया 3, एंड इसके अलावा कहीं अटके हैं मुझे बता सकते हैं। हेसे स्ट्रीट पे भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक है 800-1062 पर।
8: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big 106.2.

रहा है क्या, चाइल्डहुड इज कमिंग बैक एज मिलेनियल्स. इमरान हाशमी मेकिंग अ कमबैक विद आवारा पंटू. प्रीटी जिंटा मेकिंग अ कमबैक आफ्टर ऑलमोस्ट अ डेकेड विद बटवारा. एंड प्रीटी जिंटा की बात निकली है, ऑल यू हैव टू डू इज मुझे बताना है ये जो गाना है, ऑफ कोर्स मूवी का नाम संघर्ष, कौन सा गाना है फ्रॉम प्रीटी जिंटा संघर्ष. हर अक्षय कुमार, आशुतोष राणा, सोनू निगम की आवाज. दिस वन इज अ क्लासिक. इफ यू हैव गेस्ड द सॉन्ग, 800-1062 इज द नंबर टू डायल. दिस इज योर चांस टू विन ओपन मूवी टिकट्स कर्सी ऑफ वॉक्स सिनेमास. बिग 106.2.

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाना?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Say whoa!

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
3: 33 degrees outside, feels like 40. लो जाएगा अराउंड 31 तक. एक्सेसिव हीट, ह्यूमिडिटी है 62% पर.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: अगर मेरी तरह आपको भी एक गुड मर्डर मिस्ट्री अच्छी लगती है, देन यू विल बी इक्वली एक्साइटेड। आई जस्ट सॉ द पोस्टर ऑफ मरगांव द क्लोज्ड फाइल्स, ज़ीनत अमान प्लेइंग द लीड, एंड इट इज अ वेरी विमेन लेड शो। वी हैव गॉट ज़ीनत अमान, वी हैव गॉट किट्टू गिडवानी, वी हैव पल्लवी जोशी। आई एम बिग फैन ऑफ पल्लवी जोशी। साथ में सुचित्रा कृष्णमूर्ति, जमाने हो गए उन्हें स्क्रीन पर देखे हुए। तनाज ईरानी भी है, शिल्पा शिंदे फ्रॉम भाभी जी घर पे है। सो कास्टिंग बहुत कमाल है, एंड दिस इज कपिल कौस्तुभ की मर्डर मिस्ट्री। इट्स अ कॉम्प्लेक्स एंड वेरी वेरी अनकन्वेंशनल मिस्ट्री विच इज काइंड ऑफ लूजली बेस्ड ऑन अगाथा क्रिस्टी स्टोरी। सो द मूवी इज अ ट्रिब्यूट टू हर जॉनर ऑफ वर्क। आई कांट वेट, द टीजर इज आउट। कहा जा रहा है कि जून में ही रिलीज होगा। आई विश लॉन्ग वीकेंड के टाइम ये मर्डर मिस्ट्री रिलीज हो जाए। माई वीकेंड इज डन, बट आई लव मर्डर मिस्ट्रीज एंड एनी थिंग दैट हैज अ लॉट ऑफ विमेन टूगेदर, इट्स इवन मोर मिस्टीरियस। सो कांट वेट, आई पुट अप द पोस्टर एंड द टीजर अप ऑन आई इंस्टाग्राम पेज, गो एंड चेक इट आउट।

0: इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: This June, take your shot at millions with Big Ticket.
3: Score! I guarantee 25 million dirham grand prize.
2: Plus, 5 more winners take home 1 million dirhams each.
3: And weekly cash prizes still to be won.

0: अच्छा, जितने भी लोग मुझे आज ज्ञान दे रहे थे ना कि अरे 60 की रोड पे 60 पे कौन चलाता है, बेटा अब आपको भी चलाना पड़ेगा वरना फाइन दे देना।
1: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: साइलेंट AI पावर्ड रडार कैमरास जो है वो प्लेस होने वाले हैं एंड हो भी चुके हैं। दे विल नॉट फ्लैश बट दे विल जस्ट कीप एन आई, कीप अ वॉच। इसमें इंफ्रारेड इमेजिंग होगी टू मॉनिटर अप टू 17 ट्रैफिक ऑफेंसेस, बोथ फोटो एंड वीडियो आएगा आपका। अगर आप फोन यूज कर रहे हो, सीट बेल्ट नहीं लगाई है, स्पीडिंग सब कुछ यहाँ पे होगा, बट आपको पता नहीं चलेगा, आप पे नजर रहेगी। अगर आपने फोन यूज करा चलाते हुए तो 800 दिरहम का फाइन, 4 ब्लैक पॉइंट्स। ड्राइविंग विदाउट अ सीट बेल्ट आपको फिर फाइन लगेगा 400 दिरहम का, ब्लैक पॉइंट्स भी होंगे। अगर आप स्पीड कर रहे हैं तो 300 दिरहम का फाइन है इफ इट इज 30 किलोमीटर पर ओवर लिमिट, एंड 60 किलोमीटर अगर ओवर जा रहे हो तो 1500 का फाइन, 6 ब्लैक पॉइंट, 15 दिन व्हीकल जो है आपका रख लिया जाएगा, इंपाउंड हो जाएगा। सो या बी वेरी वेरी माइंडफुल फॉर ऑल दोज हु गिविंग न्यू ड्राइवर्स लाइक मी हु फॉलो रूल्स टू द टी, ज्ञान के 60 की रोड पे 60 पे कौन चलाता है। फिलहाल यहां से मेरे जाने का टाइम, मैं आपसे मिलूंगी अब कल। अंटिल देन डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल्स, 106.2 Big FM it is. You can say hi to me, I'm Mansi talking. I'll see you tomorrow. Have a great evening ahead. Up next with the Big Chill, some very very long drive unplugged romantic music.

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae
1: insurancemarket.ae
0: बिग 106.2 द बीट

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो किए दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।